नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं इस समय सुबह के 5:59:30। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग

0: श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में। खेती की बातें के तहत आइए आपको जानकारी दिलवाते हैं कृषि संबंधी मौन पालन लाभदायक व्यवसाय। संकलन और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का। पूर्व प्रसारित यह जानकारी है।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मौन पालन की। जी हाँ किसान भाइयों, मानव जाति की सबसे बड़ी मित्र होने के साथ छोटी सी मधुमक्खी से प्रकृति के विकास में बड़ा योगदान दिया है। मधुमक्खी मधुर और पौष्टिक खाद्य पदार्थ अर्थात शहद का उत्पादन करती है। लीची, नींबू प्रजातीय फलों, अमरूद, बेर, आड़ू, सेब इत्यादि और अन्य दलहनी और तिलहनी फसलों में मधुमक्खियां द्वारा परागण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, परीक्षणों से यह भी जानकारी मिली है कि पर परागण के बाद जो फसल पैदा होती है उन दानों का वजन और पौष्टिकता अच्छी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मधुमक्खियां केवल शहद ही पैदा नहीं करती वरन फसलों की पैदावार बढ़ाकर खुशहाल बनाकर प्रदेश और देश को आर्थिक पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद करती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी परिवार में 3 प्रकार की मक्खी पाई जाती है जिनमें रानी, नर मक्खियां और कमेरी मक्खियां होती हैं। मधु अति पौष्टिक खाद्य पदार्थ तो है ही, साथ ही दवा भी है। मैदानी भाग में इस कार्य को शुरू करने का उपयुक्त समय अक्टूबर और फरवरी में होता है। इस समय एक स्थापित मौन वंशों से प्रथम वर्ष में 20 से 25 किलोग्राम, दूसरे वर्ष से 35 से 40 किलोग्राम मधु का उत्पादन हो जाता है। स्थापना का प्रथम वर्ष ही कुछ महंगा पड़ता है। इसके बाद केवल प्रतिवर्ष 6 से 10 किलोग्राम चीनी का खर्च रहता है। प्रति मौन वंश स्थापित करने में लगभग 2450 रुपए व्यय करना पड़ता है। मधुमक्खी पालकों की मधुमक्खियों का प्रत्येक 10वें दिन निरीक्षण आवश्यक है। आधुनिकतम ढंग से मधु निष्कासन कार्य किया जाता है। इसमें अंडे बच्चे का चैम्बर अलग होता है। शहद चैम्बर में मधु भर जाता है। मधु भर जाने पर मधु फ्रेम सील कर दिया जाता है। शील्ड भाग को चाकू से परत उतार कर मधु फ्रेम निष्कासक यंत्र में रखने से और उसे चलाने से सेंट्रीफ्यूगल बल से शहद निकाला जाता है और मधुमक्खियों का पुनः मधु इकट्ठा करने के लिए दे दिया जाता है। इस प्रकार मधुमक्खी वंश का भी नुकसान नहीं होता है और मौसम होने पर लगभग पुनः शहद का उत्पादन हो जाता है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन का महत्व फलों, सब्जियों, दलहनी तिलहनी फसलों पर परागण के द्वारा उपज की बढ़ोतरी तो होती ही है, इसके साथ साथ इसके द्वारा मधु मोम का लाभ भी मिलता है। किसान भाइयों, स्थापना के प्रथम वर्ष में 3 मौन वंश से 2 अतिरिक्त मौन वंश और 20 से 25 किलोग्राम मधु का उत्पादन करके लगभग 2000 से 2500 रुपए की आय प्रतिवर्ष होती है। दूसरे वर्ष में केवल 300 से 350 रुपये व्यय करके मधु का उत्पादन करके लगभग 3500 रुपये से 4000 रुपये तक की प्रतिवर्ष आय की जा सकती है। मधुमक्खियां विभिन्न कृषि और बागवानी फसलों में परागण सुनिश्चित करके और इसके साथ ही शहद और अनेक प्रकार के छत्ता उत्पादों को उपलब्ध करा के समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। धीरे धीरे यह व्यापक रूप से अनुभव किया जा रहा है कि मधुमक्खियां पर्यावरण मित्र कृषि के साथ साथ फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से कम खर्चीली हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मधुमक्खियां द्वारा की जाने वाली परागण संबंधी सेवा से जो अतिरिक्त उपज प्राप्त होती है उसका मूल्य सभी छत्ता उत्पादों के कुल मूल्य की तुलना में लगभग 15 से 20 गुना अधिक है। मधुमक्खी पालन में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालक अपनी आमदनी को काफी गुना बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो एकीकृत कृषि व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किसान या भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जा रही है। फसलों के परागण में मधुमक्खी पालन खासा उपयोगी है, जिससे कृषि आय में बढ़ोतरी के माध्यम से किसानों या मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ रही है और शहद, रॉयल जेली आदि महंगे मधुमक्खी उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। कृषि जलवायु मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन और शहद के निर्यात के लिए व्यापक संभावनाएं और अवसर उपलब्ध कराती है। वास्तव में किसान भाइयों, फसल उत्पादन के अतिरिक्त अगर हम मौन व्यवसाय को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये हुई बातें मौन पालन की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: मौन पालन एक लाभदायक व्यवसाय, अभी आप इस पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम के तहत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान का पाठ आइए अब आपको सुनवाते हैं।

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पनखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

अभी आप सुन रहे थे संत गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।

धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात धैर्य रखने पर समय अनुकूल सब कुछ होता है। वृक्ष तभी फल देते हैं जब उनका फल लगने का समय होता है, भले ही माली सौ घड़े पानी से रोज पेड़ को सींचे। अधीरता से कुछ होने वाला नहीं है बल्कि नुकसान ही होता है। अधीर व्यक्ति व्याकुलता में गलत निर्णय कर बैठता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति सोच समझकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा करता है। धैर्य इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने में मदद करता है, क्रोध खीज से बचाता है, इंसान को संबल प्रदान करता है, नकारात्मकता से छुटकारा दिलवाकर तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। हम कह सकते हैं कि धैर्य सहनशीलता का परिचायक है। धैर्यवान होना सरल नहीं है, या यह कहना भी शायद गलत ना होगा कि आज की दुनिया में धैर्यवान बनना सबसे कठिन है। मनुष्य के जीवन पथ पर कई रुकावटें बाधाएं आती हैं, रास्ते कठिन हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे क्षण भी आते हैं जब कोई मार्ग नहीं सूझता है, मन अशांत विचलित हो गलत दिशा की ओर जाने के लिए मचलता है। ऐसे में धैर्य हमें गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकता है, अवसाद कुंठा से घिरने से भी बचाता है। विचारों में सदैव सकारात्मकता का संचार कर मन को दृढ़ कर उम्मीद की किरण जगाता है। कबीर के दोहे की यही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। संत कबीर ने अपने इस दोहे से यही समझाने का प्रयास किया है। उतावलेपन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मेहनत का फल मिलेगा लेकिन समय आने पर ही। कई बार हम तत्काल लाभ प्राप्ति के लिए जीवन के मूल्यों को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन धैर्य ही इन अवगुणों से हमें बचाता है। जीवन को संयमित रखने के लिए यह एक अहम मूल मंत्र है। जब जिंदगी में निराशा के बादल छाते हैं तब यही हमें राह दिखाता है, इसलिए मानव का धैर्यवान होना आवश्यक है। जिसके भीतर यह गुण है वास्तव में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी वह मुकाबला कर सकता है। ऐसे लोग शांत चित्त होकर मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और भटकाव से बच जाते हैं। भारतीय जीवन दर्शन में सब्र या धैर्य को व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। कहावत भी प्रचलित है कि सब्र का फल मीठा होता है। धैर्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु एक विचलित मन मस्तिष्क वाला व्यक्ति सामने पड़ी काम की वस्तु को भी हड़बड़ी में अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है जिसे वह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके अंदर अधीरता थी। इसके विपरीत धैर्यवान इंसान कोयले में भी हीरा निकालने का सामर्थ्य रखता है। हम इसे भगवान बुद्ध के इस प्रसंग से आसानी से समझ सकते हैं। बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ देशाटन पर निकले थे। नगर कस्बे गांव जंगल से घूमते हुए शिष्यों से ज्ञान चर्चा भी कर रहे थे और व्यवहारिक प्रमाण भी दे रहे थे। इसी बीच जंगल में एक नदी मिली, जिसे पार कर जंगल से निकलते ही बुद्ध ने अपने एक शिष्य से जल पीने की इच्छा जाहिर की। शिष्य जल्दी से जल लाने के लिए नदी की ओर गया, पर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, भगवान क्षमा करें, वह जल शुद्ध नहीं है। भगवान बोले, अभी तो हम उसी रास्ते से आए हैं, तब तो जल साफ था, अशुद्ध नहीं था। इस पर शिष्य ने कहा कि लेकिन अभी तो पूरी नदी ही काली हो गई है। तब बुद्ध ने दूसरे शिष्य को जल लाने के लिए भेजा। वह गया और एक घड़ा स्वच्छ जल लेकर आ गया। प्रभु ने पूछा, वत्स, क्या तुम जल कहीं और से लाए हो? उसने कहा, नहीं, मैंने नदी के जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा की, मिट्टी नीचे बैठ गई, तब मैं साफ जल ले आया। मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, पहले का जल काला इसलिए हो गया क्योंकि पशुओं ने नदी को पार किया था, तो मिट्टी जल में घुल गई। तुमने धैर्य से थोड़ी देर मिट्टी के नीचे बैठने की प्रतीक्षा की, किंतु पहले वाले शिष्य ने अधीरता दिखाई और पानी तक पहुँच कर भी वह उसे ला ना सका। यही अंतर है धैर्य और अधैर्य में। अधीरता में व्यक्ति सामने उपलब्ध वस्तु को भी ठुकरा देता है और धैर्यवान व्यक्ति शांति से सही समय की प्रतीक्षा कर इच्छित वस्तु पा लेता है। रहीम जी ने भी इस बात को दोहे से समझाया है। रहीमन चुप ही बैठिए देख दिनन की फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत बात नहीं बेर। अर्थात समय का फेर देख चुप ही बैठना उचित है, यानी उचित समय का समय संयम रखना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, धैर्यवान बने, संकलन और वाचन स्वर था निर्मला तिवारी का। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना के तहत आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री हनुमान जी के कुछ भजन।

0: हरिओम शरण और साथियों से अभी आप सुन रहे थे श्री हनुमान जी के कुछ भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर प्रणव कुमार वरणवाल से ली गई भेंट वार्ता। बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल। खुश रहना भी एक कला है।
1: तो आजकल की लाइफ स्टाइल में खुश रहना भी एक कला है। हम खुश कैसे रहें और साथ साथ जो हम एक तनाव के वातावरण में ज़िंदगी जी रहे हैं उस तनाव को कैसे कम करें, और जो लोगों में एक संवादहीनता और एक अकेलापन का एहसास होने लग गया है, इन सब चीज़ों से कैसे हम बाहर आएं, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आमंत्रित हैं रांची के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार बरनवाल। डॉक्टर बरनवाल, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। खुश रहना भी एक कला है, एक आर्ट है, कैसे लोग अपने अंदर डेवलप करें?
2: आज जो खुश है वो सफल है, यानी आज इस चीज़ की लोगों में बड़ा ही कमी है। लोग इस चीज़ के लिए लोग ढूंढते रहते हैं कि कैसे मुझे खुशी मिले, कैसे हम खुश रहें, कैसे अपनी ज़िंदगी को खुश रखें, कैसे हम परिवार को खुश रखें, समाज में बेहतर कर सकें। और अगर हम खुश रहते हैं तो मानसिक प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, यानी मानसिक बीमारी कम से कम होती है। और अगर मन की बीमारी कम होती है तो निश्चित तौर पर हमारी शारीरिक स्थिति पर भी एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत सा शारीरिक बीमारी बहुत कम होती है। खुश रहना एक कला है, और जो आदमी इस कला को सीख लिया या अपनी ज़िंदगी में डाल लिया वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकता है और बहुत संतुष्ट रह सकता है। इसकी शुरुआत अगर हम करें तो पहली चीज़ें हैं कि इसकी शुरुआत हमारी घर से होती है, यानी जिस फैमिली में सारे लोग खुश हैं, माता पिता खुश हैं, पूरे इन्वायरमेंट खुश है, उनके सगे संबंधी खुश हैं, यानी उनके दोस्तों लोग खुश हैं, तो डेफिनेटली उसका असर उस पर पड़ता है। यानी अगर फैमिली में सारे लोग अगर खुश हैं तो उसका इफेक्ट उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है। कोई भी आदमी खुश तभी रहेगा जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट से करेगा, चाहे फैमिली हो, सोसाइटी हो, या जहाँ काम कर रहा हो उस प्लेस हो या पढ़ाई का प्लेस हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो लोग खुश नहीं हैं अगर वो अपनी दिनचर्या को देखें तो उनको ये समझ में आएगा कि खुश नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण होगा कि वो अपनी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ कर दिया है, कमी कर दिया है, यानी उनकी दिनचर्या ठीक से नहीं चल रही है। जैसे दिनचर्या की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हमारी होती है खान पान से, मतलब हम क्या खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, कितना पानी पीते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे कि खुश रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने दोस्तों को, परिवार वाले को, अपने सगे संबंधियों को समय दें। इसके साथ साथ हमारे जो जिस धर्म के हैं हम पूजा पाठ पर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमारा टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार का है, मतलब टाइम मैनेजमेंट हमारा किस तरह का है। यदि ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान दें, साथ ही अगर नशा जैसी चीज़ों को भी अगर हम अपने ज़िंदगी पर बिल्कुल हावी नहीं होने दें, उससे अगर दूर रखें, तो हम बहुत हद तक अपने आप को खुश रह सकते हैं और दूसरे को भी खुश रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
1: खुशी तो आपके अंदर समाहित है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है। खुश रहने के लिए आपके आसपास का वातावरण भी बहुत जिम्मेदार हो जाता है, जैसा आपने बताया। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग तनाव के वातावरण से जी रहे हैं।
2: जी,
1: हमारे रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है वो बड़ी अव्यवस्थित सी हो गई है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, और जब हम बहुत कुछ नहीं पाते हैं तो फिर तनाव हो जाता है, और यही तनाव दुख में बदलता है, आप अवसादित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो ऐसे मन में लालसा क्यों होती है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस पाने की चाह लोगों में लगी रहती है।
2: एक्चुअली व्यक्ति को, हमारे समाज के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन का एक लिमिटेशन कहाँ तक है, यानी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम ये कंपेयर करते हैं कि उसके पास इतनी धन है, इतनी दौलत है, वो इस पोस्ट पर है, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी चीज़ें उसके पास है। जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, और उस कमी को पाने के लिए हम, जो हमारे दिमाग नहीं कहता है, लेकिन दिमाग का एक पार्ट नहीं कहता है, लेकिन दूसरे पार्ट उस पर इतनी हावी हो जाती है कि हम नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ की ललक हमारे में बढ़ती है, और बढ़ने के कारण से कुछ इस तरह से अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं जिसके कारण से हमें खुशी मिल नहीं पाती है, और भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपनी जितनी भी रूटीन वर्क है, जो भी हमारी क्रिया है, सबको ख़राब कर लेते हैं। इसके कारण से हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं।
1: लोगों में अकेलापन घिरता जा रहा है, लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं
2: जी।
1: और एक लोगों में जो बातचीत था वो कहने के खत्म सा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गजट से लोगों से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन सामने मिलकर उनसे बातें कर अच्छी अच्छी बातें करके ये इस चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये संवादहीनता क्यों हो गई है, लोग अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लग गए हैं?
2: पिछले कुछ वर्षों से जैसे ही कि डिजिटलाइजेशन हमारे कंट्री और विश्व में आया है, तब से जो संवादहीनता की प्रवृत्ति लोगों में, संवादहीनता जैसी चीज़ें हमारे लगभग सारे लोगों में आया है। कुछ लोग ये चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं जो इससे डिजिटल से दूर रहते हैं। अभी के समय में जो डिजिटलाइजेशन हो गई है, इसमें हम ज़्यादातर समय अपने गैजेट्स में, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, और उससे रिलेटेड इवन हमारे जो कमाई का साधन है वो भी उसी से रिलेटेड चीज़ों में हम ढूंढते रहते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर बड़ा ही बुरा पड़ता है, और हमारे शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, उसे तरह तरह का बॉडी में चेंजेज आने लगती है। तो ये तो होगा ही, इसलिए होगा क्योंकि आप एक जगह एक रूम में बैठकर आपने आप को एक सेंट्रलाइज कर लिए हैं, आप किसी से बातें नहीं कर पाते हैं। जब किसी से बातें नहीं करेंगे तो जो ब्रेन जो रासायनिक पदार्थ है, जिसे सीरोटोनिन जो कहते हैं, उसका सिक्रीशन तो होगा ही नहीं। जब वो सिक्रीशन ही नहीं होगा सीरोटोनिन का, सीरोटोनिन प्लेजर हार्मोन, खुश देने वाला हार्मोन है, खुश देने वाला केमिकल्स है, तो जो हमारे ब्रेन में वो सिक्रीट ही नहीं करेगा तो हम तो खुश नहीं रह पाएंगे। इवन जितनी भी खुशी की चीज़ें हैं सब में यही हार्मोन सिक्रीट होता है ब्रेन में। आज के ज़माने में जो हम अकेले सारे काम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, और इसके कारण से संवादहीनता बन जाती है, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, और इसका बड़ा ही इफेक्ट, बुरा इफेक्ट हमारे ब्रेन पर, हमारे बॉडी पर पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे फैमिली पर, हमारे सोसाइटी पर, इवन जो हमारे दोस्तों करीब पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है, और इस चीज़ से हम लोग को बचना चाहिए।
1: लोगों के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होती जा रही है, कैसे लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं, खुलकर हंसें, ठहाके लगाएं?
2: हम अपने आप को कैसे खुश रख पाएं, मुस्कुराहट ला पाएं, और जब हम खुश रहेंगे, मुस्कुराहट लाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम संतुष्ट रहेंगे, मुझे की बीमारियों से दूर रहेगी, चाहे वो मानसिक बीमारी हो या शारीरिक बीमारी हो, उससे मुझे दूर रखेगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने दिनचर्या को ठीक करें, यानी जो लोग दिनचर्या को ठीक रखते हैं उसको मेंटेन करें, और जो लोग दिनचर्या को ठीक नहीं रखते हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने का में ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सलाद, सारा सीजनल होना चाहिए।
1: इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है।
2: खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावे मिनरल्स, विटामिन्स की बड़ी ही जरूरत होती है, जिससे हमारे ब्रेन तरोताज़ा रहता है। तो इस पर विशेष ध्यान दें, प्रचुर मात्रा में पानी लें, और ये सारे चीज़ें रूटीन, खाना पीना सब रूटीन के रूप में करें। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे नाश्ता किया, कल 12 बजे किया, परसों किया ही नहीं, सीधे वो लंच ले लिया, तो इस तरह का चीज़ें नहीं। छोटी छोटी डाइट, फ्रीक्वेंट डाइट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेवी और इनफ्रिक्वेंट डाइट से, तो ये करने चाहिए। साथ में प्रचुर मात्रा में पानी लेना चाहिए। जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे जंक फूड और बाहर रेस्टोरेंट बाहर की खाना, उसको खाने से परहेज करना चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो। इसके साथ ही जो नींद है हमारी, नींद भरपूर होने लेना चाहिए, जिसे 6 से 8 घंटा नींद होनी चाहिए। नींद का ये मतलब होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं सोकर, तो मुझे तरोताज़ा महसूस हो, इनर्जेटिक महसूस हो, रिचार्ज महसूस हो, मुझे एक नई स्फूर्ति आए शरीर में, ऐसा लगे कि एक नए मतलब फ्रेश महसूस हो रही है,
1: नए ऊर्जा का संचार,
2: ऊर्जा के साथ हम आए।
0: खुश रहना भी एक कला है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रणव कुमार वर्णवाल से ली गई संजीव कुमार लाल की भेंट वार्ता। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: अथ वार्ताः। दश टनमितं मानवीय साहाय्येन सह तृतीयं विमानयानं काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। आकस्मिक जलाप्लावनेन प्रभावितस्य नेपालदेशस्य कृते भारतं मानवीय साहाय्यं प्रवर्तितमस्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सामाजिकान्तर्जालीये पटले एतत् सूचितवान्। मंत्री अवदत् यत् साहाय्यार्थं पोर्टेबल जनरेटर सेट, डिग्निटी किट्स, भोज्यपदार्थाः, जलशुद्धिकरणाय औषधयश्च सन्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् टनल उद्धार कार्यार्थं चिकित्सकानां पराचिकित्सकानां दलस्य च 11 सदस्याः अपि सन्ति। सः नेपालस्य वर्तमान साहाय्योद्धार कार्ययोः च प्रयत्नानां कृते भारतस्य समर्थनं पुनः प्रतिपादितवान्। अत्रांतरे नेपाल तिब्बतयोः विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या 57.5 यावत् वर्धिता। प्रायः 1500 यावत् जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति। उद्धारदलानि नदीतीरेषु जीवितानां कृते पृथक् पृथक् निवासस्थानानि, अधः प्रवहितानि शवानि च अन्वेषयन्ति। दक्षिणपश्चिम चीनदेशे 1.5 तीव्रतायुक्तस्य भूकम्पस्यानन्तरम् अधिकारिणः 800+ जनान् प्रभावितमण्डलेभ्यः निष्कासयन् नूतनाः सञ्चेतनाः च दत्तवन्तः, येन इतोपि जलाप्लावनस्य आशंका वर्धिता। भारतेन प्रमुखम् उद्धारकार्यम् उपशमनकार्यं च समारब्धम्। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् बुधवासरे आकस्मिक जलाप्लावन दुर्घटनायाः अनन्तरं 20+300 यावत् भारतीयाः नागरिकाः सम्पर्कहीनाः सन्ति अथवा लुप्ताः सन्ति इति कथ्यते। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवदत् यत् अन्यराष्ट्राणां भारतीयमूलनिवासिनः प्रायः 100 यावत् जनाः अपि सम्पर्करहितरूपेण एव तिष्ठन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीजायसवालः अवदत् यत् त्रिशूली वन जलविद्युत् परियोजनायां कार्यं कुर्वन्तः 63 भारतीयाः नागरिकाः प्रभावितक्षेत्रात् रक्षिताः। श्रीजायसवालः प्रसारमाध्यमैः सूचितवान् यत् जलाप्लावितक्षेत्रात् काठमाण्डुनगरं प्राप्तवन्तः तमिलनाडुराज्यात् 21 भारतीयाः नागरिकाः ह्यः नवदिल्ल्याम् आगतवन्तः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां नेपालदेशात् विमोचितान् तमिलनाडुराज्यस्य 21 तीर्थयात्रिभिः सह मिलितवान्। पश्चात् प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सः नेपालसर्वकारस्य तस्य सेनायाः च उद्धारप्रयासानां कृते धन्यवादं प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य 2-दिवसीय उज्बेकिस्तानदेशस्य यात्रायां भविष्यति। प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शवकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे ताशकंदनगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्यारभ्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीपराज्यानां 3-दिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिकपरम्परा, उद्योग, शैक्षणिक सहयोग, मत्स्यपालनादि प्रमुख सार्वजनिक उत्सवेषु भागं ग्रहीष्यति। राधाकृष्णनवर्यः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य ईरोडनगरे कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट इत्यस्य संस्थापक दिवसस्य समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चात् दिने उपराष्ट्रपतिः बेंगलुरुनगरं गमिष्यति, यत्र सः विधानसौधे कर्णाटकस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणः रामकृष्ण हेगडे वर्यस्य शतवार्षिक समारोहे भागं ग्रहीष्यति। भारतस्य वेलावन सेंथिल कुमारः गतरात्रौ निर्णायक स्पर्धायां वलाज्स फार्कस इत्यमुं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य बुडापेस्ट ओपन कॉपर टूर इति उपाधिम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's fourth visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
2: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, DOSLIC, and the seventh edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2020. 26. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
3: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadur Japarov. The summit marks the 25th anniversary of the SCO, of which India has been a full member since 2017. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing, according to the date released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority. 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. As many as 933 people from hydroelectric projects are reported missing, while 517 foreign nationals remain unaccounted for. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed from Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed in a social media post that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board.

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत आप सुनेंगे संतूर वादन, राग अलाप जोड़, ध्रुपद अंग और कलाकार होंगे पंडित भजन सोपोरी। कानून की बात सुनेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से 7:45 पर। 8 शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। हिंदी अंग्रेजी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के रांची दिल्ली केंद्र से और रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 8:30। सुबह 8:45 पर अपने स्टूडियो से हम आपको सुनवाएंगे कुछ हलमे गाने गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत। जोहार पलामू हमारे यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 9:00। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता होंगे शिव प्रशांत गौरव। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत के तहत सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी गाने 9:30। 10:00 एक बार फिर हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए और 10:10 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में हम शामिल होंगे विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए। दोपहर 1:00 का समय होगा हिंदी समाचारों का, 1:05 पर अंग्रेजी समाचार और प्रादेशिक समाचार 1:10 पर। 1:20 से पुनः सुनेंगे आप विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर। अंग्रेजी समाचार 2:00 और 2:15 पर हिंदी समाचार। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे विविध भारती के तहत 2:30 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। पुनः 2:55 पर सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार। 3:00 से सुनेंगे मनचाहे गीत विविध भारती के तहत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और 3:30 सुनेंगे विविध भारती के तहत नाट्य तरंग। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से 4:00 प्रसारित होंगे और 4:02 से आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के तहत सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज पर बातें। प्रादेशिक समाचार 5:00 एक बार फिर से आकाशवाणी के रांची केंद्र से और छाया गीत का आप आनंद ले सकेंगे 5:02 से आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के तहत।

शाम 5:30 पर एक बार फिर से हम आपको जानकारी देंगे अपने स्टूडियो से कार्यक्रम के बारे में। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवावाणी का समय होगा शाम 5:35। चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर। पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण, इस पर भी चर्चा होगी। प्रोफेसर मंजू सिंह की वार्ता सुनेंगे आप, खेल एवं व्यायाम स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी, पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। प्रादेशिक समाचार शाम 6:00, 6:02 से किसानवाणी कार्यक्रम प्रायोजित और आकाशवाणी के रांची केंद्र से ही, और 6:30 सुनेंगे आप कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर, आज की बात होगी बकरी पालन करने को लाभ पर। एक किसान राम सेवक ठाकुर कठौंधा रैसलीगंज पलामू से ले गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप। बातचीत करेंगे संतोष कुमार, अंतर्वर्ती खेती से लाभ आज की नसीहत, मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की जानकारी और पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव भी आप इसी कार्यक्रम में जान पाएंगे। शाम 6:55 पर लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र। प्रादेशिक समाचार 7:00, जिले में आजकल 7:10 पर। शाम 7:15 पर अपने स्टूडियो से हम आपको सुनवाएंगे स्वरांजलि कार्यक्रम के तहत चंद गजलें। फनकार होंगे मेहंदी हसन, अनुवांशिकी इस शीर्षक के तहत आप विज्ञान जगत में कुछ विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। शाम 7:45 पर संकलन और वाचन सुरोगा प्रीति कुमारी का और पूर्व प्रसारित यह जानकारी होगी। फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से के तहत सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने रात्रि 8:00। 8:30 विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत हिंदी अंग्रेजी उर्दू समाचारों के लिए शामिल होंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, और 9:30 आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के तहत आज के फनकार। रात्रि 10:00 रजनीगंधा के तहत सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने अपने स्टूडियो से। हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए एक बार फिर शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रात्रि के 11:00 और 11:10 पर करेंगे सभा समापन। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग का, तो आइए सुनते हैं संतूर वादन। कलाकार हैं पंडित भजन सोपोरी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र में कानून की बात कार्यक्रम के लिए।

0: महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, गुमराह करने वाले भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षा और अधिकार, यानी हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियोज में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक आर पाटिल जी को, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची के वाइस चांसलर हैं, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय रांची के वाइस चांसलर। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भ्रामक विज्ञापन कहते किसे हैं और कानून की दृष्टि से इस श्रेणी में कौन कौन से विज्ञापन आते हैं।
1: इसको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज ये अच्छे है, एडवर्टाइजमेंट अच्छे है पब्लिक के लिए, पर वो सच रहना चाहिए। सच के बिना वो मिसगाइड रहा तो, रॉन्ग रहा तो, उसको हम बोलते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एंड वो लॉ के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ये प्रोहिबिटेड है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है। वो दिया तो कौन दिया है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं एंड कंज्यूमर उनके ऊपर केस डाल सकते हैं।
0: कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट, उसके बारे में जो जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जा सकती है, अगर वो सच्ची नहीं है तो उसे हम मिसलीडिंग कर सकते हैं।
1: यस सर, वो मिसलीडिंग हो जाता है।
0: दो तरह की बातें आती हैं, एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और एक होता है कि किसी भी चीज के बारे में इस तरह से प्रचार करना जो एग्जेजरेटेड है थोड़ा ज्यादा, तो इन दोनों में किस तरह से फर्क कर सकते हैं हम लोग।
1: ये एग्जेजरेटेड करते हैं वो, उसको हम पपरी बोलते हैं समटाइम। सब वो विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट लेमैन के एंगल में देखते हैं। ये लेमैन देख के वो सच है बोल के वो परचेज करता है ना, वहाँ हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, ये मिसलीडिंग है, ये अदरवाइज है। सो इसलिए ये कभी कोई एडवर्टाइजमेंट को लेमैन कैसे वो देख के सुन के अंडरस्टैंड करता है, वो अंडरस्टैंड करके वो परचेज करता है, उसके ऊपर हम ये डिवाइड करते हैं।
0: रेडियो, दूरदर्शन और अखबार में तो विज्ञापनों की भरमार रहती है और आती भी है, ये परंपरागत रूप से विज्ञापन देने के लिए प्लेटफॉर्म जाना जाता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है या फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां विज्ञापनों की भरमार है और इसमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है, तो हमारे जो श्रोता हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमारे उपभोक्ता, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: उपभोक्ता दे हैव टू लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली।
0: जी,
1: अभी नया लेजिस्लेशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एंडोर्समेंट का डेफिनेशन दिया है, एंडोर्सर्स लायबिलिटी का प्रोविजन दिया है। कोई आदमी आके, एक्टर एक्ट्रेस आके ये अच्छा है परचेज करो, वो सच से दूर है तो ये कंपनी को भी लायबिलिटी आएगा, कंपनी के ऊपर भी लायबिलिटी आएगा। वो कौन बताया है वो एंडोर्सर, एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर भी लायबिलिटी आ जाएगा। दैट इज द प्रोविजन अंडर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।
0: तो मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि कंपनी जो है, जो उस उत्पाद को बनाने वाली कंपनी है और उस विज्ञापन को, उस उत्पाद के लिए जो विज्ञापन बनाया गया, उसको जो एंडोर्स करते हैं, उस विज्ञापन को जो करते हैं, कई सेलिब्रिटीज होते हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके माध्यम से ये कराया जाता है लोकप्रिय व्यक्तियों द्वारा, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई है, अकाउंटेबिलिटी उनकी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी उत्पाद का विज्ञापन करने के पहले जो विज्ञापन करता है उसे भी जान लेना है कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है या नहीं।
1: हाँ, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द केस मैगी केस हुआ था
0: जी,
1: उसमें एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे अमिताभ बच्चन एंड माधुरी दीक्षित, उसमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने नोटिस दिया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस लेके आया एंडोर्सर्स लायबिलिटी के ऊपर। अभी एंडोर्सर उनको पैसा मिल रहा है, कुछ भी वो एडवर्टाइजर बोल दिया वो ऐसा नहीं बोलना है, ये बोलने के लिए स्क्रिप्ट दिया तो क्या ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर, उनको रिसर्च करके वो सच है तो वो बताना है, नहीं है तो उनके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा।
0: बिल्कुल, यानी कि जो विज्ञापन करता है, जो विज्ञापन कर रहा है किसी उत्पाद के लिए, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है कि वो विज्ञापन में जो बोल रहा है, जो बात वो पब्लिक के सामने रख रहा है, उसकी सत्यता परख ले, जांच ले कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है। कई विज्ञापन में ऐसा देखा गया जैसे लिखा रहता है कि 100% सुरक्षित, 100% प्योर या 100% गारंटेड इस तरह की, या भारत का नंबर वन इस तरह का विज्ञापन है, या जितने भी उत्पाद हैं उसमें सबसे बेहतरीन, तो इस तरह के जो विशेषण लगाया जाता है एडजेक्टिव्स, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को सतर्क रहना चाहिए?
1: कंज्यूमर को सतर्क रहना चाहिए, ये 100% ये सोप 100% क्लीन करता है, मेनी केसेस आर फाइल्ड ऑन दैट एंड नेशनल कमीशन सेड यू कैन नॉट एडवर्टाइज, ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है और अंडर डिफरेंट लेजिस्लेशन। फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज थ्रू आउट इंडिया अभी फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर बहुत रेड्स हो रहा है, आइडेंटिटी क्या गलत हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो वहाँ भी अंडर दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करना है, दी बेस्ट वो ऐसा नहीं करना है, वो रूल्स के अंदर ही मेंशन किया है, फिर भी ये बिजनेस पीपल वो करते हैं। क्योंकि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन इंडिया कंज्यूमर्स आर नॉट अलर्ट, इन डेवलप्ड कंट्रीज वो अलर्ट है, इसलिए वहाँ बिजनेस पीपल आर वेरी सीरियस, वो क्या बोलते हैं वो सच बोलते हैं, यहाँ झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको मालूम है कोई इतना सीरियसली कंज्यूमर्स नहीं लेता है, केस नहीं डालता है, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कंज्यूमर्स का अलर्टनेस एंड एक्टिव फाइलिंग केसेस फॉर जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया सर।
0: तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर्स हैं या उपभोक्ता हैं उनके लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है, उनके क्या अधिकार हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार पर हम आएंगे बाद में, उसके पहले एक और जानकारी चाहिए कि जैसे एक बात हो गई विज्ञापन दे रहे हैं किसी भी उत्पाद का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके बारे में बता रहे हैं, कभी कभी बातें छुपा ली जाती हैं, जैसे कि अधूरी बात बताई गई, तो क्या ये भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आएगा?
1: मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो डेफिनेशन दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वन ऑफ द क्लॉज हाइडिंग ऑफ द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एंड कंज्यूमर्स का एक राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को लेना चाहता है, उसके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पूरा सच बताना चाहिए, कुछ भी सच वो छुपा लिया तो वो आएगा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर।
0: कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो या कुछ आप लेना चाहते हैं तो कंपनी की तरफ से इस तरह के विज्ञापन आते हैं कि जल्दी कीजिए, इसे तुरंत खरीदिए तो आपको फायदा होगा, अगर देर हो गई तो फिर आप इससे वंचित रह जाएंगे। तो इस तरह के जो मतलब समय का प्रेशर देना उपभोक्ताओं पर, या फिर रिव्यूज के बारे में गलत रिव्यूज बताना प्रोडक्ट्स के बारे में, ये सब क्या दंड के अंदर आता है? इसके
1: ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं। और अभी आपने बताया वो एक प्रोडक्ट बचा है जल्दी खरीदिए, ये अर्जेंसी करते हैं ना, वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके आया डार्क पैटर्न कॉन्सेप्ट के अंदर। डार्क पैटर्न मीन्स ये ऐसा मिसलीड करके परचेज करते हैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसलिए वो अभी कंट्रोल कर रहे हैं। अभी और एक फेक रिव्यू भी आ रहा है 5 star, 4 star, वो एक्चुअल रिव्यू नहीं रहता है। देर आर कंपनीज हु क्रिएट दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई द सेंट्रल मिनिस्ट्री कॉल्ड वन मीटिंग इन मुंबई एंड इन्वाइटेड ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये फिक्की, सी आई आई, एसकॉम एंड ऑल ई कॉमर्स कंपनीज, अमेजॉन, फ्लिप

0: Flipkart, Meta, they said गवर्नमेंट इज ऑलवेज एनकरेजिंग बिजनेस, बट आप मिसलीड कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और रूल्स लेके आएंगे. उसके ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड भी लेके आया ऑनलाइन रिव्यू बोल के. अभी वो अप्लाई हुआ है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं वो ऑनलाइन रिव्यू के ऊपर. एंड रिव्यू भी कंज्यूमर देखना पड़ेगा. अच्छे रिव्यू ऊपर रखते हैं, बैड रिव्यू नीचे रखते हैं. कोई कंज्यूमर को उतना टाइम नहीं मिलता है नीचे जाके देखने के लिए, वो ऐसा भी मिसलीड करते हैं. इसलिए कंज्यूमर्स को अलर्ट रहना चाहिए.
1: अब बात वही आती है कि इतने सारे भ्रामक प्रचार हैं, रिव्यूज के माध्यम से हो या एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो, तो ऐसे में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है अभी प्रभाव में, तो उसके तहत उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए क्या-क्या उपाय हैं, क्या-क्या प्रावधान है, कुछ जरूरी चीजें जो आप बताना चाहें.
0: अभी कोई कंज्यूमर कुछ परचेज किया है प्रोडक्ट को और सर्विस को हायर किया है, उसको वो कंसिडरेशन दे के लिया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा. और वो कुछ गलत हुआ तो वो सेलर के पास जाके उनको बताना पड़ेगा, ये गलत हुआ है, मेरे को जस्टिस दे दो. फिर भी वो जस्टिस नहीं दे रहा है तो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर कैन गो टू कंज्यूमर कमीशन, जाके वहाँ वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है.
1: मैं ये चाह रहा था जानना कि अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि जैसे आपने बताया कि किसी प्रोडक्ट का है तो कंपनी के पास आप शिकायत कर सकते हैं, नहीं तो फिर फोरम में जाइए. इसके अलावा जो एंडोर्सर है उस पर भी क्या सीधे तौर पे कंज्यूमर कुछ कार्रवाई कर सकता है?
0: कंज्यूमर को कैसे वो मिसगाइड हुआ है उसके ऊपर किसके अगेंस्ट वो फाइल करेगा वो डिपेंड होता है. वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट टू एक्टर और एक्ट्रेस एंडोर्सर किया है तो कंपनी के ऊपर केस होगा और एंडोर्सर के ऊपर भी होगा. और कहाँ से परचेज किया है, वेंडर को भी वो पार्टी बना के उनको कॉम्पेंसेशन चाहिए. तीनों मिला के दे दो या एक आदमी दे दो, मेरे को कॉम्पेंसेशन चाहिए, ये सिविल रेमेडी है. वो तीनों के अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकता है.
1: तो श्रोताओं, आपने देखा कि किस तरह से किसी भी प्रचार के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिसलीड किया जाता है, किया जा रहा है. तो जरूरत सिर्फ प्रोडक्ट्स या उसकी कंपनी के लिए नहीं, जरूरत हमारी भी है, उपभोक्ताओं की है, कि हम सतर्क हों, शिक्षित हों और अपने अधिकारों को जानें, कहां पर हमें शिकायत करनी है, क्या करनी है और उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें बचा कर रखने हैं. डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियोज में आए, हमारे श्रोताओं के सामने आपने बहुत अपने विचार साझा किए, आपने बहुत ही बहुमूल्य समय हमें दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच.
2: अभी आपने सुना कानून की बात के अंतर्गत कानून के बारे में जानकारी. भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर अशोक आर पाटिल और भेंट करता थे प्रभु शरण. प्रस्तुति थी प्रभु शरण.

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात यानी 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंट्रल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 30 विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
7: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 99682-919888 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977-98513-16807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
9: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें

0: भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOV NG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में दो दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी, मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने 4 सफल अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार, पूरे नेटवर्क की हो रही जांच। यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित, 9 और 10 सितंबर को दोबारा होगी अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की परीक्षा। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में चल रहे राजकीय श्रावणी मेले का हुआ समापन, बाबा मंदिर से हटा अर्घा सिस्टम, स्पर्श पूजा शुरू। और हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप में 5वां स्थान हासिल करने पर भारतीय महिला टीम को 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की, झारखंड में खुशी की लहर। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
1: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से आयोजित CGL प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफल 4 अभ्यर्थियों को CID ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में धनबाद निवासी दीपक कुमार, बिहार भोजपुर निवासी उमेश कुमार राय, धनबाद निवासी विजय कुमार तिवारी और बिहार के सारण निवासी आनंद कुमार सिंह शामिल हैं। इस मामले में जांच एजेंसी परीक्षा में गड़बड़ी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और नियुक्तियों में अनियमितताओं के विरोध में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की ओर से आयोजित भर्ती सुधार यात्रा दुमका के SP कॉलेज परिसर से निकाली गई। इस दौरान छात्र नेता ने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण राज्य के मूल आदिवासी और मूलवासी युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1800-4747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreforms.taskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

0: बल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों के तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। 16 अगस्त को समाज शास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी विषयों की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद तीनों परीक्षाएं इस वर्ष सितंबर में फिर से आयोजित करने की घोषणा की गई थी। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सभी जिले के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि होम टू रोल सत्यापन के दौरान BLO घर घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहे।
2: भारत का नागरिक का नाम ये मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए। निर्देश सभी कर्मचारी का दिया हुआ है, सभी कर्मचारी इसके लिए प्रयास कर रहा है। अभी मतदाता से भी मेरा अनुरोध है उसके लिए आप सहयोग करें। केवल विदेशी नागरिक उनका नाम कटेगी, बाकी सभी पात्र बाधक नागरिक का नाम आएगी। उससे एक वोटर का नाम है 1 अक्टूबर 2026 में उनका सबका नाम रहना आवश्यक है।
1: सिमडेगा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। DSP रणवीर सिंह ने बताया कि गोवंश पशुओं के अवैध कारोबार और गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई है।
3: सूचना के आलोक में पुलिस का थाना जाकर चेकिंग लगाया, गाड़ी को पकड़ा गया, कुछ लोगों को पकड़ाया और 2 व्यक्तियों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया। इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 10/8/26 की गाड़ी पकड़ी गई थी बोले मेरा थाना अंदाजा, जिसमें 108 kg गांजा मिला था। उस दिन ये लोग निकाल दिए गए, जिसमें 5 लोगों की टोटल गिरफ्तारी की गई है।
1: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में 1 महीने तक चले राजकीय श्रावणी मेले का समापन हो गया। इसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अर्घा हटाकर स्पर्श पूजा की शुरुआत की गई। राजकीय श्रावणी मेले के अंतिम दिन कल उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर समेत कई अधिकारियों ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र रांची ने 31 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। आज दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नेदरलैंड्स में हुए FIH महिला हॉकी विश्व कप में 5वां स्थान हासिल करने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को 50 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। झारखंड की सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल एम्स्टेलविन में 5वें और 6ठे स्थान के लिए हुए मैच में दुनिया की 5वीं वरीयता वाली टीम जर्मनी को 3-1 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय टीम की इस सफलता पर कप्तान सलीमा टेटे के सिमडेगा जिला स्थित गांव सहित पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नेपाल में बाढ़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल त्रासदी के बीच 21 भारतीय लौटे, 85 बचाए।

गए और 320 अब भी लापता। प्रभात खबर ने नेपाल को हाइड्रो पावर प्लांट से पलामू मजदूर के लापता होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने राजस्व दस्तावेजों का गायब होने के मामले में नामकुम की तत्कालीन सीओ श्वेता वर्मा सहित

0: सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने 4 सफल अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। पूरे नेटवर्क की हो रही जांच। यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित। 9 और 10 सितंबर को दोबारा होगी अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की परीक्षा। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में चल रहे राजकीय श्रावणी मेले का हुआ समापन। बाबा मंदिर से हटा अर्घा सिस्टम, स्पर्श पूजा शुरू। और हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप में 5वां स्थान हासिल करने पर भारतीय महिला टीम को 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। झारखंड में खुशी की लहर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जनवरी तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता दोस्तों, अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। आप तमाम साथियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए निर्मला का नमस्कार और आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं गीत संगीत का

अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज़ों में खामोशी द म्यूजिकल फिल्म का गाना। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं अगला गाना।

अभी आप सुन रहे थे 10 फिल्म का गाना। आवाज़ें थी आशा भोसले, उदित नारायण, शंकर महादेवन की। गीत के बोल समीर के थे। धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनवाते हैं अब आपको इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

तलाश फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे विशाल दादलानी की आवाज़ में। गीत के बोल थे जावेद अख्तर के और गीत को संगीतबद्ध किया था राम संपत ने। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम जोहार पलामू। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का, संयोजन करता है श्री प्रशांत गौरव।
6: जोहार पलामू।

जोहार नमस्कार, स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम के सफ़र के आपकी दोस्त है निर्मला। धैर्य, लगन, उत्साह वह पूंजी है दोस्तों, जो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। जी हाँ, और यह चरितार्थ किया हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी ने। आज है उनकी जयंती। देश अपने महान खिलाड़ी को याद कर रहा है और उनके सम्मान में कई जगहों पर खेल दिवस के उपलक्ष्य में कई प्रकार के खेल आयोजित किए जा रहे हैं, पुरस्कार सम्मान वितरित किए जा रहे हैं। मित्रों, खेल चाहे जो भी हो, खिलाड़ी में अनुशासन, धैर्य, साहस, स्फूर्ति, एकाग्रता भर देता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल में रुचि होती ही है। बचपन से ही बच्चा कोई ना कोई खेल ज़्यादा पसंद करता है, तो अभिभावक को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बच्चों की अभिरुचि के अनुसार उन्हें खेल के प्रति जागरूक करें, प्रेरित करें। इससे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास सही तरीके से होता है, उनमें अनुशासन, लगन, उत्साह और खेल के मैदान में साथ ही खिलाड़ियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने से उनमें जुनून भी पैदा होता है जीत के प्रति। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के महान खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने समय में हॉकी खेल को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वह स्वर्णिम दौर था दोस्तों, जब भारत हॉकी के लिए जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद जी का हॉकी कौशल और बॉल पर ग्रिप इतना शानदार था कि ऐसा लगता था जैसे बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपक ही गई हो। कई बार तो लोगों को भ्रम हो जाता था और कई बार उनके हॉकी स्टिक की जांच भी की गई, क्योंकि विरोधियों को हमेशा यही लगता था कि शायद कुछ गलत है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि कोई इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। लेकिन यह तो सच था दोस्तों कि ऐसा वो खेलते थे, और ऐसा खेलते थे कि जब बॉल उनके पास आ जाती थी, उनकी स्टिक से जैसे चिपक ही जाती थी और दूसरों को मौका ही नहीं मिलता था। जी हाँ, और यह सच है कि हमारे देश में ऐसे महान खिलाड़ी हुए हैं जिससे देश हमारा गौरवान्वित हुआ है हमेशा हमेशा, और आज भी हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने देश को, अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ा रहे हैं और जीत का स्वाद चखा रहे हैं। ऐसे महान खिलाड़ियों से आने वाली पीढ़ी सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहती है और उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत रहते हैं। जी हाँ, तो उनमें उत्साह पैदा होता है आने वाली खिलाड़ियों में और आने वाली पीढ़ियों में, और जो खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनमें भी उत्साह पैदा होता है। जी, हमारे देश की मिट्टी ही ऐसी है दोस्तों कि यहाँ एक से बढ़कर एक महान हस्ती हुए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश को गौरवान्वित किया और साबित किया कि हिंदुस्तानी हर क्षेत्र में आगे।

जी हाँ, क्योंकि हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की माटी में वो बल है जो लोगों में अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता और विश्वास पैदा करती है। आइए सुनते हैं ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, हमारा देश ऐसा ही है और हमें गर्व है अपने देश पर, हिंदुस्तानी होने पर। चलिए बातें कर लेते हैं मौसम की। मौसम की बातें करें तो मौसम तो अपना रंग दिखा ही रहा है। राज्य के कई ज़िलों में लगातार भारी या कम वर्षा हो रही है। इससे मौसम सुहावना तो है दोस्तों, लेकिन कई जगहों पर मौसम की मार से जनजीवन बेहाल भी है। भारी वर्षा से पुल पुलिया सड़कें मकान ध्वस्त हो गए हैं, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति भी हुई है और लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है, लोगों से अपील की है सावधान रहने की, और आज उन्होंने येलो अलर्ट भी जारी किया है क्योंकि कई ज़िलों में भारी वर्षा हो सकती है, वज्रपात हो सकता है और कई ज़िलों में कम वर्षा की संभावना बनी हुई है। जी हाँ, और इस तरह से मौसम को देखते हुए सावधान रहने का अनुरोध किया जा रहा है कि आप जागरूक रहें, सावधान रहें। बाहर निकलें तो आप वज्रपात से बचने के लिए आप अपना ख्याल रखें, ऐसी जगहों पर ना जाएं, यदि आवश्यक ना हो तो फिर वर्षा में बाहर ना निकलें। दोस्तों चलिए, अब ये तो हो गई मौसम की बातें, मौसम की जानकारी, और अब कर लेते हैं सेहत की बातें। ये जो बरसात का मौसम है, जिसमें कभी वर्षा होने से ठंड बढ़ जाती है हल्की सी, या फिर कभी बहुत बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी होती है, ऐसे में शरीर का तापमान घटता बढ़ता है और कई तरह की बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं मौसम के मार से, क्योंकि इस मौसम में कई तरह के जीवाणु, विषाणु, फंगस, ये सब भी उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, और ये सारे कई कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। शरीर में फ्लू हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, वायरल बुखार हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, मच्छरों के काटने से, मक्खियों के प्रकोप से आपको पेट से संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि वो आपके भोजन में बैठती हैं और भोजन को दूषित कर देती हैं, और दूषित भोजन करने से, पानी पीने से आपको पेट संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसी तरह बरसात के मौसम में पानी भी दूषित हो जाता है, इसलिए हमेशा चिकित्सक कहते हैं कि संभव है तो पानी को उबालकर पीना चाहिए इस मौसम में। जी हाँ, और इसके साथ ही कई तरह के जीव जंतु भी हैं, जहरीले कीड़े हैं, सांप हैं, जो इस बारिश के मौसम में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सांप के बिलों में पानी भर जाता है और वो घबरा कर बाहर निकल कर इधर उधर भागते हैं, घरों में घुस जाते हैं, लोगों को जो उनकी चपेट में आता है उन्हें वो काट देते हैं। इस तरह से लोग सर्प दंश के शिकार हो जाते हैं। लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन डर से लोगों की मौत हो जाती है भले ही वो सांप जहरीला ना हो। इस तरह से कई बातें होती हैं इस मौसम में जिससे अपना बचाव करना आवश्यक होता है। मच्छर मक्खियों के प्रकोप से बचने के लिए तो घर में आप जब भी रात के समय सोएं तो मच्छरदानी लगाएं, घर के आसपास सफाई रखें, घर में स्वच्छता का ध्यान रखें, हाथ की सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, बाहर से आएं तो अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह से साफ करें, और मच्छरों को भगाने के लिए आप जो मच्छर को भगाने की जो दवाइयाँ आती हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सूखी नीम की पत्तियों का धुआं कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय हैं उसके द्वारा भी मच्छर भाग जाते हैं। और सुबह शाम के वक्त मच्छर ज़्यादा होते हैं, ऐसे में आप खिड़की दरवाज़ों को थोड़ी देर के लिए बंद रखें तो ये उस समय घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जी हाँ, इसी के साथ ये जो सांप जैसे हैं उनसे बचने के लिए भी आप सतर्क रहें। घर में अगर ये संभावना है कि सांप आपके घर में घुस आते हैं तो आप उन उपायों का प्रयोग करें जिससे वो घर के अंदर ना आए, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जिनको यदि आप बाहर रख देते हैं तो फिर उसके गंध से वो प्रवेश नहीं करते हैं। जी हाँ, तो इस तरह की छोटी छोटी सी बातें। इसी तरह से बरसात के मौसम में यदि आप बारिश में भीग गए हैं, आपका पैर कीचड़ में भीगा हुआ है, आप घर आए हैं और उसे अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते हैं, तो फिर पैरों में फंगल की समस्या हो जाती है और जो पूरे शरीर में दानों के रूप में उभरती है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं त्वचा संबंधी, जो काफ़ी परेशान करती हैं। ऐसे में हर चीज़ का बचाव है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप को मौसम के अनुसार ढालें
और मौसम के अनुरूप अपने खान पान का ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और मौसम का भी आनंद ले सकेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको एक गाना।

आप सुन रहे हैं जोहर पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं आज की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं के बारे में। देश दुनिया के इतिहास में 29 अगस्त की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में दर्ज है। अगर हम सन 1831 की बातें करें तो सन 1831 में ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने पहली बार ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन किया था आज ही की तारीख को। ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम ने कानून का रूप लिया था 1833 में आज ही की तारीख को। अमेरिका के सेंट लुई में तीसरे ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी सन 1904 में आज ही की तारीख को। भारतीय हॉकी के इतिहास में कई सुनहरे पन्ने जोड़ने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था आज ही की तारीख को। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था आज ही की तारीख को। और प्रसिद्ध बांग्ला कवि संगीतज्ञ दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का निधन हुआ था आज ही की तारीख को। सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए गए थे आज ही की तारीख को सन 1998 में। और इराक के पवित्र शहर नजफ पर आत्मघाती हमला हुआ था, शिया नेता समेत 75 लोग मारे गए थे आज ही की तारीख को। और टाटा मोटर्स ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बवाल से क्षुब्ध होकर पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नैनो परियोजना स्थल से अपने कर्मचारी हटा लिए थे आज ही की तारीख को। जकार्ता एशियाई खेलों में भारत को दोहरी सफलता मिली थी और अरपिंदर सिंह ने पुरुषों की त्रिकूद में और स्वप्ना वर्मन ने महिलाओं की हैप्टेथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था आज ही की तारीख को। पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल और ऊंची कूद के एथलीट निषाद कुमार ने रजत पदक जीते थे आज ही की तारीख को सन 2021 में। और तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई थी आज ही की तारीख को। भारत और जापान ने चंद्रमा पर संयुक्त अन्वेषण के लिए चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया था आज ही की तारीख को सन 2025 में। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और चलिए एक बार फिर लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर, क्योंकि जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। यदि हम थम गए पल भर के लिए तो समय हमसे आगे निकल जाएगा और हम रह जाएंगे

0: एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो फिर कुछ नहीं। जी हाँ, क्योंकि ज़िंदगी चलते रहने का ही नाम है, समय के साथ साथ। और हमारे इस कार्यक्रम का समय भी, देखिए इस कार्यक्रम का सफ़र समय के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ आ पहुँचा उस मुकाम पर जब हम आपसे लेते हैं विदा। तो इस कार्यक्रम से विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर था निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता थे श्री प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हल्म संगीत के कार्यक्रम में आप तमाम साथियों का स्वागत है। आइए सुनवाते हैं आपको कुछ चुनिंदा हल्मी गाने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी में। आइए सुनवाते हैं अब आशा भोसले को फिल्म सुजाता में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे मस्ताना फिल्म में। आइए अब आपको सुनवाते हैं शगुन फिल्म का गाना इन्हीं की आवाज़ों में।

दुलारी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और आइए एक बार फिर से सुनवाते हैं इन्हीं को जब जब फूल खिले फिल्म के गाने में।

0: Vin Saxena. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की चार दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा के मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगुनविस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वो ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 1924 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजना से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंकरोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना भारत की खेल संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती खेल व्यवस्था हर स्तर पर प्रतिभागियों के पोषण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर।

चौदहवीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने, मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे, डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से, गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

दूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी है, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव, थोरात रितेश आकाश, रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण।

दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

ढूंढो ढूंढो रे साजना मुरे कान का बाला, और हम लगातार ढूंढ रहे हैं आपकी फरमाइशी पत्र, और लगातार कुछ कुछ नए नाम हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे नियमित श्रोताओं के नाम भी शामिल हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई इस गाने के लिए, उनके नाम मैं पहले पढ़कर सुना दूं आपको। मछली गोदाम रायगढ़ से ये पत्र मिला है इसी गाने की, इसके अलावा भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं। भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, लीलू और इनके अन्य मित्रगण। बरगी नगर जबलपुर से चिट्ठी आई है रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश और इनका पूरा परिवार। नरोत्तम गौड़ ने फरमाइश भेजी है लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, और ये जो पत्र है मेरे हाथ में, ये पत्र आया है लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से। बहुत सारे नाम लिखे हैं, केसर बाई, हेमंत, योगेश और निजा, सुनीता, विनीता, अभय, अभिषेक, आयुष और इनका पूरा परिवार। और कुछ फरमाइशें और आई हैं, ये फरमाइशी पत्र आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके मित्रगण। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और दोस्तों, हम पत्र वो शामिल करते हैं जिसमें बहुत सारे पत्रों में एक ही फिल्म के गाने लिखे होते हैं, लेकिन कई

और हम आपके फरमाइशी पत्र शामिल कर लेते हैं और एक कोई पत्र उठाते हैं जिससे आपको गाना सुनवाते हैं, मतलब एक पत्र में एक फिल्म का नाम लिखा है वो गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, बाकी कुछ फरमाइशी पत्र भी शामिल करते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं ये फिल्म कन्यादान से।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये हैं, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव, जत्तो रानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वचकामले, सुषमा वचकामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तुआ। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्णनगर टीवी टावर्स से, और हमारे ये श्रोता हैं छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहरगंज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन महेंद्र और इनके साथियों की ओर से, और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: अरे, देखो जरा, देखो तो।
2: क्या देखूं? क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: क्या मेरी कमीज? मैं चाहे जैसा पहनूं।
3: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू है? है?
3: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
2: अरे पहनी है ये क्या काम है? तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया।
3: अरे क्या मिल गया? क्या मिल गया?
2: ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
3: ये कोई सबे है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे?
2: हाँ, और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब। चलो चलो अपनी राय लो, रसोई में जाओ।
3: मेरी समझ में नहीं आता आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है।
2: तुम क्या समझोगी? अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल।
3: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
2: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
3: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
2: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
3: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
2: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
3: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। और इन साहब को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही है। अखबार पढ़ेंगे, पढ़ाओ बैठ कर अखबार।
2: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा, रेखा भाई सुनती हो?
3: अरे क्या है, क्या है?
2: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
3: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
2: फुर्सत नहीं क्यों? रसोई में तुम क्या धो रही थी?
3: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा? तुम्हारा चाचा?
2: क्या कहा तुमने?
3: मैंने कहा बर्तन कौन? तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
2: चाचा मर गए। चाचा अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी।
3: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
2: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
3: क्या
2: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
3: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
2: खाना खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है, बहाना।
3: अब करना क्या है वो बोलो।
2: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
3: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
2: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
3: जी गलती हो गई, बस
2: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
3: तो गलती सुधार लो।
2: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
3: बस बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस
2: साफ सफाई, साफ सफाई कौन करे, मैं करूं?
3: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
2: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
3: तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
2: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
3: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? हा?
2: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
3: पति नहीं, वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी
2: सीधे एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला।
3: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है, मेरे नहीं।
2: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए? है?
3: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
2: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
3: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
2: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाटकोपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
3: अरे अरे मेरी चप्पल उतारो, उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इस पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं, हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
2: अब रहने दो, रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
3: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
2: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
3: चप्पल टूट गई है।
2: टूट गई? किसने तोड़ी?
3: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
2: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
3: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं क्योंकि पूजा के लिए ले जाएगा।
2: उफो, अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने दो, जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
3: वो
2: मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
3: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो उधर।
2: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
3: कल रात तुम्ही ने वहाँ उतारे थे।
2: अरे आए, इसके फीते कहाँ गए भाई?
3: ओहो अब मुझे क्या मालूम,
2: कल तो थे ना।
3: चूहा ले गया होगा।
2: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
3: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम्हें क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो तुम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
2: अब तुमने मुझे दीवाना कहा है?
3: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
2: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
3: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनोहर लाल की धर्मशाला।
2: मैं कहता हूँ चुप बैठो नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
3: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
2: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
3: नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
2: रेखा रेखा तुम समझती क्यों नहीं हो, जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
3: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
2: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा, बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
3: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो।
2: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पकपक है।
3: अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
2: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
3: अरे शादी के पहले तो कहते थे।
4: रेखा, तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
2: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
3: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
2: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
3: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
2: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी। अब अब अब अब अब मर गया, मर गया। चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर दरवाजा खोलो।
4: देखो मेरे कपड़े कपड़े वपड़े सब ठीक है ना?
2: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहां की फटी पुरानी पहन रखी है। वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो, और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिचड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
4: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
2: मैं जा रहा हूँ।
5: मौसी मौसी मौसी कहाँ हो तुम? मौसी
2: अरे भाई मैं हूँ, मैं हूँ, मैं
5: मौसी जी आप। थैंक गॉड, मुझे लगा कोई मोहली पीछे पड़ा है।
2: भाई ये तो बताओ, ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
5: महोदय जी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
2: वो क्यों?
5: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
2: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है।
5: मौसी कहाँ है लेकिन?
2: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
5: आज से क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
2: अभी अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतने जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
5: मौसी कहाँ है बताइए ना।
2: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
5: मौसा जी ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
2: ओ हो हो हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
5: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
2: Then you should not marry, because marriage is a biggest joke.
5: Please, मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
2: घर में झगड़ा कर आई हो?
5: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
2: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
5: मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ? आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
2: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
5: इनफ इनफ, बहुत सुन लिया आपका मैंने।
2: देखो बेटे, ये घर मेरा है।
5: घर मेरी मौसी का है।
2: और तुम्हारी मौसी मेरी है,
5: ऐसा आप समझते हैं?
2: क्या मतलब?
5: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
2: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना, मुझे नहीं समझ में आया।
5: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
2: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
5: मौसा जी,
2: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
5: नहीं।
2: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे, फिरते थे।
5: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
2: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
5: हाँ, लेकिन ये बात एक मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
2: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
5: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
2: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
5: आप मुझे बताइए, मौसी बढ़ गई है क्या?
2: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में हो।

0: रानी और असल में काम वाली ही समझते हो ना, सभी मर्द अहंकारी होते ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बच चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह
1: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है, प्लीज हेल्प।
2: क्या हुआ इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? लीना तुम क्या हुआ?
1: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
2: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
1: इस पर पिताजी आए हैं।
2: तुम कब आई लीना?
0: अभी थोड़ी देर पहले।
2: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
0: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
2: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना।
0: वीरेंद्र, वीरेन, वीरेन, वीरेन, वीरेन।
2: क्या हुआ उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
2: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
0: पति? गधा है गधा।
1: मालूम होता है लात खाकर आई है।
2: तुम बीच में ना बोलो जी।
1: चाचा जी आ रहे हैं मालूम है ना। अरे लीना ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पड़ी पहन कर चला जाता हूँ।
2: अरे ये क्या पागलपन है,
1: थोड़ी छोटी होती है बस।
0: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
1: गुलाब जामुन रस मलाई
0: मुझे नहीं खानी।
2: इनके चाचा जी पधार रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
1: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो अब की बार तो चाचा जी हैं।
2: ओहो चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
1: लीना लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं, चार चार।
2: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
1: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
2: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
1: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
2: तो कोई नई बात नहीं है, लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं, एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
0: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो जाओ ना।
2: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
0: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
1: ओहो तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं खोले देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
3: ओह थैंक गॉड लीना तुम यहाँ हो।
0: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
3: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यही होगी।
0: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हुँ? मेरी जासूसी कर रहे हो, शर्म नहीं आती? बेशरम
2: लीना, तुम होश में तो हो, ये क्या बोल रही हो?
0: गेट आउट, आई से गेट आउट।
3: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
0: ये लोग कोई पराये नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
1: चलो ये वीरेंद्र के जूते ही डाले लेता हूँ।
2: ये तुम क्या कर रहे हो?
1: ये बूट बूट बूट
3: ये बूट तो मेरे हैं।
1: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
2: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते नहीं घर में मेहमान आई है।
3: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
0: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
3: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
0: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
2: लीना वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों?
3: अरे बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
4: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
3: अच्छा

0: शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
1: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
0: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
1: क्या बोलो?
0: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हम बाग में बैठे।
0: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
1: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
2: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा।
3: नो,
2: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
3: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
3: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यही बैठ गया।
1: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
3: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
1: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
3: अरे यही दिन है रोमांस करने के लिए ना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
2: हाँ
3: तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
2: हाँ क्यों?
3: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
2: कितने का दूं बाबूजी?
3: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
2: वहां बैठने का 10 रुपया?
3: हाँ हाँ,
2: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
3: चलो किसी होटल में चलते हैं।
1: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
3: ऑल राइट, एज यू विश।
4: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
3: क्या है?
4: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
3: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
4: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
1: ये आपने कैसे समझ लिया?
4: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
3: मगर आप हैं कौन?
4: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
3: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
4: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
1: आप क्या चाहते हैं?
4: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
3: स्याही खत्म हो गई?
4: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
1: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
4: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
3: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
4: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किन मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
1: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
3: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
4: मैं आगे बढ़ूं?
1: ओह श्योर।
4: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
3: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
4: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
1: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
4: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
1: फिर?
4: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
4: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
4: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
3: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
4: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
4: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
3: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
4: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
3: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
4: ऐसा नहीं किया जा सकता।
3: क्यों?
4: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
3: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
4: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
4: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
4: हाँ, आज ही।
3: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
4: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
4: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
3: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
1: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
3: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
3: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
3: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
3: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना,
3: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
3: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
1: प्लीज मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
3: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
3: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
3: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: ना।
3: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
3: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
3: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
3: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
3: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
3: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
3: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव लव लव, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
5: लीना लीना, ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
3: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
3: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
3: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
3: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
6: दोनों पागल हैं।
5: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
6: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
5: फोन करके देखूं चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
6: मेरे पास कहाँ होगा।
5: अब कहाँ जा रही हो भाई?
6: देखूं तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
5: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
6: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
7: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा, और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कांगड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
8: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
9: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
8: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
9: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
8: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
9: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
8: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
9: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR और दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की सुनवाई की जा सकती है। इसी कड़ी में आज जामताड़ा जिले के नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में विशेष शिविर लगाकर मतदाताओं के दावा आपत्तियों की सुनवाई हुई। जिले के उपायुक्त आलोक कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची से छूटे नहीं, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगरी स्थित EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, CCTV की कार्यशीलता तथा संपूर्ण परिसर की निगरानी व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को EVM वेयर हाउस के संचालन और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के अनुपालन का निर्देश दिया। रांची जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर आज नामकुम थाना क्षेत्र के पुराना रामपुर के पास दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिवाइडर पर उगी घास की कटाई कर रहे मजदूरों को तेज रफ्तार एक मालवाहक वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर घायल हो गए। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालीन पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में रामगढ़ और सरायकेला खरसावां जिले में कई हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात होने की संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
12: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माने समझा रेडियो बज रहा है।
11: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो। रेडियो क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने। और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
12: क्या बात है।
11: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
12: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
11: जी आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है, बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके, है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से यासी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही, तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरे जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए, ये मेरी लाइफ का आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था, ये आवाज। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें, स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए, वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
12: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
11: जी।
12: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था
11: जी, बिल्कुल। आई थिंक हम 6th क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
12: 6th क्लास में?
11: 6th क्लास।
12: पैर वैर पहुंच रहे थे?
11: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे, वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
12: भाग जाएगी,
11: चाबी चुरा के,
12: एक्सीडेंट का डर नहीं।
11: हाँ, तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
12: अरे भगवान,
11: रोके कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे। फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम 6th में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे, पता नहीं क्यों था। मेरी
12: गाड़ी मतलब
11: 4-व्हीलर
12: प्रॉपर, वो तो, लाल बत्ती वाली?
11: नहीं नहीं नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सच चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे, तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
12: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
11: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
12: तो पैर पहुंचने।
11: हाँ, क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम 6th स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो भाई 6th से लेके 8th-9th तक, मतलब 12th तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी, और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8th से ही चिल्लाना शुरू कर दिए थे गाड़ी सिखा दो, बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बने कि बना है कि नहीं बना है, आ गया है तो चलाने दो, लेकिन बिकॉज और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है, तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
12: क्या बात है, मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
11: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
12: एजुकेशन
11: पे फोकस है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये ज़रूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी, तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट, और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर
12: तो क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
11: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही है, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक। और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ।
12: बहुत ही रेपुटेड,
11: बहुत बहुत बड़ा रेप्यूटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है, मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे,
12: मतलब इतनी काबिल है,
11: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे। और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
12: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं
11: है, नहीं है, नहीं,
12: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं,
11: राइट,
12: तो नशा होता है संगीत का वहां,
11: करेक्ट। तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था, सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर, और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है, और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी। सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स, और तब जो आज मेरे दोस्त हैं तब वो वहां के जजेस थे, राहुल वैद्या और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के। आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले, तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया।
12: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
11: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था। और पता नहीं हमको बचपन से हमेशा से हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा। तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जब जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे।
12: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, क्योंकि इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
11: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये?
12: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे।
11: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में।
12: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा ज़माना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक CSR हर बच्चे ने पढ़ी होगी, UPSC की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम 7th-8th में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था RJ। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, हम बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो RJ ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें, खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि RJ हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में आप क्या बनना चाहती है, एंड आई सेड RJ, सो दे मेड मी एन RJ फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें RJ के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और RJ भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कॉम्पिटिशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
0: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
1: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो। ठीक है, चलो माफ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे, इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे। हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं।
0: मेरे माँ बाप को 12th
1: के एग्जाम के दौरान,
0: वेरी गुड।
1: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
0: बीच में गैप्स होते हैं,
1: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी, और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहां भी जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे, और वहां पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुंचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
0: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहां आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहां के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
1: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं, और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था। हम कभी टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोस देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था। तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था। ऑल दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में ये था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छा। अंग्रेजी इसको कैसे आती है। और रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए। वो स्ट्रगल मेरे लिए ज्यादा था, टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं। हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सिंह नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो।
0: अच्छा,
1: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं।
0: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला
1: इतना
0: रहा है।
1: बड़ा, और वो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
0: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है।
1: करेक्ट,
0: बाकी तमाम चीजें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
1: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस। हमको एक ही चीज पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरे पर्सनालिटी की जहां तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
0: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
1: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना, व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
1: तो
0: बहुत बड़ी बात है
1: जी। तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था। वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको।
0: अच्छा,
1: अब तो आउट हो चुके हैं।
0: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने।
1: हाँ।
0: और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
1: राइट,
0: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात नहीं करता। कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
1: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
0: अरे भगवान,
1: कि हम तो इनके जैसे ना, मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है, और हम करके बात करते हैं तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
0: ये भी मान चुके
1: ये थे। भी माने हुए थे हम। कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा, इसलिए हम हार गए।
0: अरे बाप,
1: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है,
0: ये ख्याल कहां से आया था?
1: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहां ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो, मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहां से लाओगी जेवर।
0: हे भगवान,
1: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
0: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
1: बताइए बेटी बेचवा।
0: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से में इसका अर्थ भी बता दें।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, उसमें कहानी भी यही है।
0: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है,
1: ये हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई एम वेरी लकी।
0: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: और ये बहुत पेनफुल है, जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
0: जी,
1: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
0: बहुत बड़ी बात बोली है,
1: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
0: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
1: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
0: वो भी
1: वो है जीवन।
0: हाँ।
1: जीवन वो है,
0: बिल्कुल,
1: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वही प्रेम है, ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्क भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
0: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
1: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट,
0: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
1: पूरी
0: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया,
1: और वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम, रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी, पता नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी वो बहुत कड़क थी,
0: अपनी कमजोरी दुनिया के सामने
1: कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
0: हाँ।
1: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
0: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
1: तो
0: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है।
1: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था। लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
0: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
1: हाँ, तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
0: आपको लगा नहीं था कि ये होगा कि एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने?
1: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
0: हाँ।
1: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही है, हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद लेकिन काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि फाइनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
0: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
1: जी,
0: वहां से लौटने के बाद
1: हाँ
0: मन का बांध टूटा
1: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
0: अच्छा, पहले ये तस्दीक हो गई?
1: पहले था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
0: अब नहीं
1: स्टूडियो
0: है।
1: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती है। आपने कभी देखा एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहां हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है। ये स्थिति थी।
0: और कौन था जो संभाल रहा था?
1: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
0: मतलब
1: हम दुखी
0: एक
1: हैं।
0: अकेले कमरे में
1: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
0: गजब।
1: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजे का तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे की बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं। सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
0: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
1: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया, कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहां हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी, अब तो
0: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें।
1: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है, क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना, जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे। अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
0: वो नहीं किया,
1: वो नहीं हो सकता। तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
0: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा।
1: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही

0: बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए है। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार।

0: स्टार पैदा हो गया है।
1: वो पर्दे के पीछे है,
0: वो पर्दे के पीछे है, जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं।
1: और वो ओझल है,
0: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है। बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत प्यारी बात है
0: जी।
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान होता है,
0: सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
1: हाँ,
0: 2-3 साल के अंतर पर
1: है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, और हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वही होती थी और स्माइल के साथ वही रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती है जिनकी जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी,
0: तो
1: बहन की बात चल रही है,
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी, और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा, हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मोड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया, यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज, कोशिश करते हैं।

0: क्या बात है। मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है, जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने रांची के अरगोड़ा इलाके में खूंटी पुलिस की छापेमारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए आरोप लगाया कि बिना FIR और सर्च वारंट के पुलिस ने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री को आगाह करते हुए कहा कि पुलिस को नसीहत दिया जाए कि वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। गिरडी पुलिस की पहल आपका मोबाइल फिर से आपका के तहत आज जिले भर के 112 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे गए। इस दौरान मोबाइल धारकों ने गिरडी पुलिस के प्रति आभार जताया है। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अब तक सैकड़ों लोगों के उनके मोबाइल वापस लौटाए जा चुके हैं, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आई है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों और जिला सर्विसेज पदाधिकारियों को अलर्ट कर रहने और संक्रमण की निगरानी रखने का निर्देश जारी किया है। बाबा नगरी देवघर में आज से भादो मेला शुरू हो गया है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भादो मेले के सफल संचालन को लेकर कल सरदार पंडा धर्म रक्षणी सभा तथा तीर्थ पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन ने बैठक कर श्रद्धालुओं की सेवा सुविधा और सुरक्षा निश्चित करने पर बल दिया। इधर राजकीय श्रावणी मेले के समापन के बाद आज से बाबा बैद्यनाथ धाम में अर्घा को भी हटा दिया गया है, जिससे श्रद्धालु अब बाबा को सीधे स्पर्श कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

भाई के लिए बहन क्या है और बहन के लिए भाई का मोल कितना है, ये बातें शब्दों में नहीं भावनाओं में बयां की जाती है। भाई को दुनिया की हर सुंदर चीज में अपनी बहन की ही छवि नजर आती है। और बहन, भला दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बहन को अपने भाई से ज्यादा अनमोल लगी हो। प्रेम का ये रूप अनूठा है,

कैसा भी हो, बिछोह उसके साथ जुड़ा ही होता है। बचपन का ये साथ भी कहां जन भर साथ चलता है। आखिर एक न एक दिन अपने भाई की नोक झोंक में कही गई बातों को सच करती हुई वो बहन चली ही जाती है परदेश, अपने पिया का घर बसाने। और उसे रोज चिढ़ाता भाई भरी आंखों से देखता ही रह जाता है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। बचपन की यादों में खोई बहना याद करती है घर की चार दीवारी, अपना आंगन, सखियों की चुहलबाजियां, और इन यादों में मुस्कुराती है तो भर भर आती हैं अखियां भी। कलेजा मुंह को आता है और याद आती है उस खेवैया की, जो ले जा सकता है बचपन की उन गलियों में कभी भी। पुकार लगती है बस उस नाम की,

बचपन की बातों को अपने दिल से लगाए, कभी हंसे तो कभी आंसू बहाए, भेजे संदेश पीहर कभी बादलों के साथ, कभी करे चंदा से अपने वीरे की बात। कौन समझ सकता है एक बहन के मन के हालात, पराए घर में जिसके दिल में बसते हैं अपने घर के एहसास।

वो याद करती हैं तो भूला कहाँ भाई का भी दिल अपनी इस बहन को। घर में फैली हर ओर उसकी ठिठोली, हंसी खिलखिलाहट की मध्यम होती आवाजें, वो दो चोटी में झूमती नाचती चिढ़ती चिढ़ाती। वो घर की चौखट में पैर धरते ही अब बहाती है आंसू, भाई छेड़ता है और एक बार फिर मुस्कुरा उठती है बहन। यही तो है अरमान उसका, खिली रहे खुशियों की चमक सदा चेहरे पर।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:35 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम व्यू वाणी। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। किसान वाणी का समय होगा 6:02 पर। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा आप सुन सकेंगे 6:30 से। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक 7:00 आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार 7:10 पर। जिले में आजकल

गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि आप सुन सकेंगे शाम 7:15 से। विज्ञान जगत की बातें आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। इंद्रधनुष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से। समाचार संध्या रात 8:45 पर, न्यूज़ @9 रात 9 बजे, उर्दू में खबरें रात 9:15 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे चर्चा का पहला विषय है राष्ट्रीय खेल दिवस। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने शानदार हॉकी प्रतिभा से भारत का नाम पूरा दुनिया में रोशन किया। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि लोगों और विशेष रूप से युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए प्रेरित करना भी है। दोस्तों, आज के समय में हमारी जीवन शैली तेज़ी से बदल रही है। बच्चे और युवा पढ़ाई, नौकरी और तकनीक की दुनिया में व्यस्त हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके कारण हमारी शारीरिक गतिविधियाँ भी कम हुई हैं। ऐसे समय में खेल हमारे जीवन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भी है। दोस्तों, खेल हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमें अनुशासन, समय का सदुपयोग, आत्मविश्वास, धैर्य और टीम भावना भी सिखाती है। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वह उसे नियमों का पालन करना पड़ता है और अपने साथी खिलाड़ियों का सहयोग करना पड़ता है और जीत के साथ साथ हार को भी स्वीकार करना भी सीखना पड़ता है। दोस्तों, युवाओं के लिए खेल क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, आज आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि खेल आपके व्यक्तित्व निर्माण का भी माध्यम है। नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर सक्रिय रहता है और व्यक्ति में ऊर्जा बनी रहती है। खेल एकाग्रता, आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायक होती है। इसके अलावा खेल हमें चुनौतियों का सामना करना और असफलता के बाद दोबारा प्रयास करना भी सिखाता है। आज अगर किसी युवा का सपना खिलाड़ी बनने का है तो उसे अपने सपने को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आप पेशेवर खिलाड़ी नहीं बनना चाहते, तब भी प्रतिदिन कुछ समय खेल या व्यायाम के लिए निकालना जरूरी है। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हमें मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। उनका जीवन बताता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि उसके लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और समर्पण आवश्यक है। दोस्तों, आज के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने मोबाइल और इंटरनेट का पूरा समय व्यस्त नहीं रहें। हम अपने कुछ समय अपने खेल के लिए और अपने स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर निकालें। दोस्तों, खेल हमें केवल जीतना ही नहीं सिखाते, बल्कि हार के बाद फिर से उठकर जीतने की कोशिश करना भी सिखाता है। दोस्तों, इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम स्वयं स्वस्थ रहने और दूसरों को भी खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए संकल्प लें, क्योंकि स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों इस गाने के बाद आइए सुनाते हैं आपको वार्ता। विषय है खेल एवं व्यायाम, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी। वार्ताकार है मंजू सिंह।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन पूर्ण रूपेण सत्य है। मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति तनाव मुक्त रहेगा। तनाव मुक्त मस्तिष्क में सकारात्मक विचार पनपते हैं और व्यक्ति सक्रिय रहता है। अच्छे जीवन यापन के लिए स्वस्थ शरीर का होना अत्यावश्यक है। स्वस्थ शरीर में आत्मविश्वास दृढ़ होता है।

खेल और व्यायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ, सुडौल और शक्तिशाली बनता है। हमारे भीतर एक नवीन चेतना जागृत करता है। शरीर में नए रुधिर के संचार से हमारा मन प्रसन्नचित, उल्लासित रहता है। मन में साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग की भावना और संगठन आदि उच्च गुण विकसित होते हैं। खेल से पूरे व्यक्तित्व का विकास संभव है। खेल और व्यायाम तन की दुर्बलता और रोगों से बचाकर सबलता और निरोगता की तरफ ले जाते हैं। खेल और व्यायाम से शरीर में फुर्तीलापन, कार्य करने की शक्ति, स्थिरता, दुखों को सहन करने की शक्ति, कफ आदि दोषों का विनाश और भोजन को पचाने वाली अग्नि की वृद्धि करता है, जो स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। इसी क्रम में हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को खेल की दुनिया में बहुमूल्य योगदान दिया है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान व कालजयी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह ने भारत को ओलंपिक खेलों से 1928, 1932, 1936 में स्वर्ण पदक दिलवाया। इस दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्रमुख है। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेलों के आयोजन किए जाते हैं। 29 अगस्त 2012 में भारत में उत्सव के दिनों में इस राष्ट्रीय खेल दिवस को सूची में पहली बार सम्मिलित किया गया था। भारत में कई खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जैसे उड़न परी पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद इत्यादि। दुनिया में सबसे पुराना खेल कुश्ती है। फुटबॉल, क्रिकेट लोकप्रिय खेल हैं। खेल मंत्रालय द्वारा सभी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शारीरिक फिटनेस को जीवन जीने का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका मूल उद्देश्य था कि सभी लोग फिट रहें, स्वस्थ रहें। उन्होंने नारा दिया, मैं फिट तो इंडिया फिट। यह जन आंदोलन बने, इसके लिए समिति बनाई गई। कोविड महामारी ने जिस तरह लोगों को तनाव और परेशानी में डाला है, उसे देखते हुए इसका महत्व अब और बढ़ गया है। पिछले 2 वर्षों में फिट इंडिया मूवमेंट अपने विभिन्न अभियानों द्वारा और कई अन्य माध्यमों से देश भर में लाखों लोगों से जुड़ा है। फिट इंडिया का मूल मकसद लोगों को खेल और व्यायाम के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट की वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर खेलों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक खेल सामग्री तथा खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, जिसके फलस्वरूप आज हमारा भारत ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक खेलों में शानदार

0: प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत अपनी छाप छोड़ी है भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय खिलाड़ियों ने खुद को, परिवार को, समाज को, देश को गौरवान्वित किया है। श्रोताओं, खेल और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस जो मनाया गया उसकी पहल उन्होंने प्रथम बार की और प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। इससे शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहता है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। प्रकृति और मनुष्य के बीच का सामंजस्य है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था खेल एवं व्यायाम स्वास्थ्य शरीर के लिए ज़रूरी। वार्ताकार थी मंजू सिंह। दोस्तों, इस वार्ता के बाद अब हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका संबंध सीधा हमारे जीवन और भविष्य से है, जी हाँ दोस्तों, वह वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे स्वस्थ बनाने में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, लकड़ी और औषधियाँ प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वे धरती के तापमान को संतुलित रखने में, मिट्टी का कटाव रोकने और वर्षा चक्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों, आज तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या के कारण जंगलों की संख्या लगातार कम हो रही है। पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित, गर्मी में वृद्धि, वायु प्रदूषण और जल संकट जैसी समस्याएं बढ़ रही है। ऐसे समय में वृक्षारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। दोस्तों, वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी जानते हैं। एक पेड़ केवल हमें छाया ही नहीं देता बल्कि वह हमें अनेक जीव जंतुओं को आश्रय भी देता है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद करती है और हवा की गुणवत्ता सुधारती है। उसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती देती हैं और वर्षा में पानी को जमीन तक पहुंचाने में सहायता भी प्रदान करती है। अगर हम आज अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां को स्वस्थ हवा, हरियाली और बेहतर पर्यावरण मिल सकेगा। दोस्तों, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं वृक्षारोपण नहीं है। पौधे को लगाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। उसकी नियमित देखभाल, पानी देना, उसकी सुरक्षा करना और उसे बड़ा होने तक संभालना भी उतना ही आवश्यक है। दोस्तों, इसमें युवाओं की क्या भूमिका होती है और क्या भूमिकाएँ होनी चाहिए, इसके बारे में भी बातें करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवा समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हर युवा अपने जन्मदिन या किसी विशेष अवसर या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि पर कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी जिम्मेदारी लेने का संकल्प ले सकता है। दोस्तों, स्कूलों में विद्यार्थियों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी एक पौधा लाए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लें। इससे बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होगी। दोस्तों, केवल पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि पेड़ बचाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम अक्सर देखते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए हैं, लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि पेड़ हमें पहले से मौजूद हैं उसे बचाया जाए। हमें अनावश्यक पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, कागज़ का कम उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग भी कम करना चाहिए और पानी की बचत करने जैसे छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, आज पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे, पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटने से बचाएंगे और दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। हम ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है और हमें पेड़ों के प्रति अपने लगाव को भी दर्शाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनवाते हैं आपको इस चर्चा के बाद एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों इसी गाने के साथ वक्त हो चला है हमारी आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू संगठन की मजबूती और पार्टी का जनाधार की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। उन्होंने आज रांची के ओरमांझी स्थित आवास पर खिजरी विधानसभा की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी संगठन को विधानसभा क्षेत्र में धारदार बनाने और समसामयिक विषयों के अलावा भावी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में दोबारा परीक्षा लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की जांच CID को सौंपने और समय सीमा में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रांची के गांधीनगर में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस मौके पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पारा फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कंचन ने कहा कि इस खेल में पहली बार वैसे दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो दिव्यांग के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हैं। ओडिशा के मयूरगंज जिले में हो रही लगातार बारिश का असर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भी दिखाई देने लगा है। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश को से खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी हां श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और अब आइए सुनते हैं

0: गच लगाओ गच बचाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सब भाई और बहन मन के रोर मन के रेडियो संगे मनोज और
0: विष्णुकर
1: जोहार। और ये कार्यक्रम को प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: तब विष्णु भाई क्या हाल चाल है, किसन खेती बारी मन चलत है?
0: एकदम नगदे है मनोज भाई, रौरे कर कहो कैसन हाल समाचार है?
1: एकदम बढ़िया है, देखो एखन बरखा पानी भी ठीक होलक और खेती बाड़ी करत थी, और संगे संगे देखो नी सब्जी मन भी उगा थी, और देखो बगल में हमरे कर खेत कर बगल में जंगल झाड़ मन भी है, वहाँ से रुगड़ा खोखरी मन ढेर भेटा थे, तो खो हमरे मन खाए की खेती बाड़ी करत है।
0: और देखो आयर कर बगल में अगर गाछ वृक्ष जैसे लीची मन हो गलक, आम्बा जामुन हो गलक, ये सब लगाव तो कते बेस रही।
1: सही बात है भाई बहन, देखो हमरे कर अगर कोनो ठाव ऐसा बाचल है तो गाछ वृक्ष में लगाए चाहिए। और देखो सबसे बड़ बात है कि हमरे के गाछ वृक्ष में नहीं सरकार दिन से ध्यान भी देवे ना, और गाछ वृक्ष में फ्री भी देवे ना, है कि नहीं? उकर हमरे मन के फायदा उठाए चाहिए।
0: एकदम उठाए चाहिए भाई।
1: और देखो फल वृक्ष अगर बात करे ला तो हमरे मन देखो आम लीची जैसा बहुत सा अमरूद हो गलक, ऐसा बहुत सारा ऐसा फल है जेके हमरे मन लगाए के एक तो आमदनी भी कमाए सकेला और संगे संगे खाए के भी भेटाई, है कि नहीं?
0: और इकर से पर्यावरण कर संरक्षण भी हुई।
1: सही बात है। तो देखो विष्णु भाई आज कर कार्यक्रम में काका जुगाड़ है, तेने बताई दू ने हमरे कर भाई बहन मिले?
0: हाँ बता दे। आज कर बात में हमरे मन फल वृक्ष कर रोग नियंत्रण कैसे करे के इके हमरे मन जानब, और इके बतावे विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद्र लाल, और इनकर से गोठियाए हैं हमरे कर प्रभु शरण जी।
1: और इकर बाद हमरे मन सुनब कृषि विकास गीत में कालिंदी कुमारी और संगे मन कर गावल गीत। और देखो रोजे बेरा रोरे मन के नवा नवा किसान से भेंट मुलाकात करवाते रहिला, इसने आज रोरे मन के भेंट मुलाकात करवाब मशरूम उत्पादक किसान बिक्की कुमार से, है कि नहीं? तो विष्णु भाई देखो हमरे मन जैसे की फल वृक्ष कर बात कर रहे थे, तो इकर बारे में हमरे के विस्तार से जाने के चाहिए, चूंकि देखो बहुत सारा किसान मन ऐसा है नी कि खेती बाड़ी तो करे ना है, लेकिन जानकारी कर अभाव में बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा।
0: एकदम सही बात के कह ली। तो देखो फल वृक्ष मन कर देख रेख कैसे करे है, और इकर में जो रोग मन लाग जाएला उके कैसे नियंत्रण करे है, तो इके हमरे मन आज कर बात में जानब, और इके बताते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद्र लाल, और इनकर से गोठियाए हैं प्रभु शरण जी।
1: चलो तो सुनी ले।
5: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर हेमचंद्र लाल, अध्यक्ष पौधा रोग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, और आज हम बात करने जा रहे हैं फल वृक्षों के बारे में, फलों के बारे में। झारखंड राज्य में अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो प्रमुख फल हैं जिनकी खेती की जाती है यहाँ, उसमें आम है, अमरुद है, पपीता है, नींबू है, इसी तरह के फल प्रायः लोग इसकी खेती करते हैं और ये मार्केट में उपलब्ध भी कराया जाता है। तो इन फल वृक्षों का, बगानों का, या जो शौकिया भी इन फलों का उत्पादन करते हैं, तो उसमें रोग नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, इसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार।
6: नमस्कार किसान भाई जोहार।
5: अगर हम आम की बात करें तो इसमें प्रमुख कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लक्षणों के बारे में भी बता दें।
6: जी किसान भाई, आम में पौधे में वृक्ष में
5: जी
6: मुख्य रूप से जीवाणु जनित झुलसा और कैंकर रोग है, दूसरा चूर्णी लाशता है, तीसरा बीमारी जिसको कि हम एंथ्रेक्नोज के नाम से जानते हैं, और देखते हुए होंगे कि आम का जो ऊपर वाला भाग है वो कभी कभी काला पड़ जाता है, जिसको कि हम ब्लैक टिप भी कहते हैं मैंगो में। ये इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको कि हम लोग मैंगो मालफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ये प्रमुख रूप से जो भी किसान भाई आम का पेड़ लगाए हुए हैं उसमें ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो अब है कि जीवाणु जनित जो झुलसा और कैंकर रोग है उसको हम कैसे पहचाने।
5: ये सर अभी आप जो जिस रोग के बारे में आपने बताया उसको देख कर कैसे पहचानेंगे।
6: हाँ, तो है कि जब आप संक्रमित पौधे को जीवाणु जनित झुलसा एवं कैंकर रोग में देखेंगे तो पाएंगे कि पेड़ के पत्तों के ऊपरी भाग पर जो है थोड़ा सा वाटर सोक्ड लेजन बनता है, जो पत्ती है उस पर पानी जैसा होगा और वो वहाँ सूखना शुरू हो जाता है।
5: अच्छा।
6: और वो लेजन्स जो है एक लेजन दूसरे लेजन से मिलते हैं और फिर फैल कर भूरा और काला हो जाता है वो जगह। तो इस तरह का लक्षण जब आपको पता चले तो इसको आप समझिए कि ये जीवाणु जनित झुलसा या कैंकर रोग है। इसमें अगर आप एक दवाई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm माने 1 gram दवा 5 liter पानी में
5: जी,
6: अगर तीव्रता कम है तो 1 gram दवा 10 liter पानी में, 100 ppm से हम लोग कहते हैं कि 200 ppm तक इसको ये करना चाहिए। और एक बार इसका छिड़काव कर दिया जाए 15 दिन के उपरांत जो है एक दवा है ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50, ये भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें तत्व है, केमिकल तत्व है, ये 3 gram प्रति लीटर पानी से छिड़काव कर देने से, 2 बार छिड़काव करने से इस बीमारी से किसान भाई जो है
5: निजात पा सकते हैं,
6: फल वाले वृक्ष को निजात में ला सकते हैं
5: जी।
6: दूसरा एक कहते हैं अंग्रेजी में जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू चूर्णी लाशता, इसमें किसान भाई संक्रमित पेड़ के पत्तियों पे आप देखेंगे कि टेलकम पाउडर जैसा जो है पूरा पाउडर बिखरा पड़ा मिलता है
5: जी, जी।
6: तो ये बेसिकली जो फफूंद है उसके बीज हैं, स्पोर्स हैं। तो देखते ही आप पहचान जाइए कि ये चूर्णी लाशता है। और इस देखिएगा कि जब आप मंजर वाली अवस्था होती है आम में तब ये बीमारी देखिएगा कि पूरे मंजर में भी आ जाता है और मंजर को काला कर देता है
5: जी।
6: और उसी समय माहू का प्रकोप भी होता है। तो किसान भाई आपको चाहिए कि इसमें एक बहुत सस्ती दवा प्रचलित दवा है सल्फेक्स TWP 3 gram दवा ये लीजिए। और एक है रोगर डाइमेथुएट के नाम से आता है रोगर, तो 2 ml ये लीजिए। तो 1 liter में 3 gram ये मिला दीजिए, 2 ml ये मिला दीजिए, तो माहू का समस्या भी समाप्त हो जाता है और चूर्णी लाशता का समस्या भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आम में जो है एक बताया गया कि जो आम का जो ऊपरा सिरा होता है फल का जो काला पड़ जाता है, तो ये बीमारी मुख्यतः आपको देखिएगा कि वहाँ होता है जहाँ की ईंट का भट्टी है, तो ईंट के भट्टी से जो सल्फर डाइऑक्साइड का फ्यूम्स निकलता है इसी के कारण जो है इसमें एक पोषक तत्व बोरॉन की कमी हो जाती है। और ये 1 to 2 kilometers का एरिया जो ईट भट्टी का है वहाँ जो आम का पेड़ है इसमें बीमारी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है।
5: कई बार जैसे मार्केट में भी ये देखने को मिलता है कि कुछ आम बड़ा फ्रेश दिखते हैं और कुछ आम ऐसे होते हैं जो अभी आपने बताया कि उस पर ब्लैक स्पॉट काले काले रंग के धब्बे होते हैं, तो क्या इसी बीमारी के कारण
6: वो बताएंगे, वो थोड़ा सा अलग बीमारी है।
5: अच्छा।
6: जब अधिक बारिश हो तब जो सूटी मोल्ड का इम्पैक्ट होता है।
5: अच्छा।
6: तो उसमें करना चाहिए कि डाइथेन M45 एक दवा है, जैसे ही बारिश अधिक होने लगती है तो ये फफूंद जो है वो पनपता है।
5: अच्छा।
6: तो उसमें डाइथेन M45 ढाई ग्राम दवा 1 liter पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे, उस समस्या से किसान भाई निजात पा लेंगे। लेकिन यहाँ है कि बोरेक्स 3 to 4 kilograms बोरेक्स जो है उसका छिड़काव आपको 500 liter पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं, तो और ये 2 बार करेंगे तो आपके उस आम के पेड़ में ये समस्या कम।
5: ये तो बात हुई आम की।
6: हाँ।
5: थोड़ा सा अमरूद और पपीते के बारे में भी यही जानकारी।
6: हाँ।
5: जो आम समस्या है और खास करके झारखंड से जिसका वास्ता है तो उसके बारे में बताएं कि अमरूद और पपीते के
6: जो अमरूद का बगीचा किसान भाई लगाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 2 समस्या आती है अमरूद में। एक तो देखिएगा जब फलने फूलने वाला अवस्था में है 4-5 साल फला भी पौधा तो अचानक देखिएगा सूख जाता है और मर जाता है, तो ये इसको हम लोग सूखा रोग की समस्या कहते हैं, ये फफूंद से होता है। और इसमें है क्या कि इस जो एक बार मिट्टी में आ गई ये बीमारी मृदा जनित रोग है।
5: अच्छा।
6: और देर से चूंकि समझ में आता है तो किसान भाई को बाद में नुकसान करना पड़ता है। तो इसमें अगर खरीफ फसल में समस्या आ जाए तो उसमें क्या करना है किसान भाई कि आपको एक सरी गोबर की खाद अपने पास रखनी है, उसमें एक फफूंद है जो जैविक जैविनाशी है, वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है, ट्राइकोडर्मा पाउडर जो बाजार में भी उपलब्ध है।
5: अच्छा,
6: तो उसको पहले आप सरी गोबर की खाद में निवेशित कर लें किसान भाई, और निवेशित करके प्रति आम का जो घेरा है उसमें, हाँ अमरूद का, उसमें रिंड बना दें, और रिंड बनाने के बाद उस घेरे में 1 से 1.5 kg उस निवेशित खाद को प्रति घेरा में डाल करके हरेक 3 महीना पे इसका उपचार करेंगे।
5: रिंड का मतलब जिसमें पानी इकट्ठा होता है गड्ढा।
6: हाँ, जो रिंड कहा जाता है कि सर की जो कैनोपी है उसके चारों तरफ थोड़ा एक नाली चारों तरफ बना देते हैं, एक फीट का
5: वहाँ पर पानी टिक सके,
6: टिक सके और उस
5: और बिल्कुल जड़ में सटा भी ना हो।
6: और जड़ के पास जो है जड़ का फैलाव वहाँ तक होता है ये माना जाता है। तो उसमें अगर 3 बार 4 बार अगर आप करते हैं तो ये समस्या आपका समाधान में हो जाता है। दूसरा एक बीमारी एंथ्रेक्नोज है। एंथ्रेक्नोज में देखा जाता है किसान भाई कि जो आप पौधा का पत्ती है या फल है उस पर देखिएगा फफोला टाइप बनना शुरू होता है, एक फफोला दूसरा फफोला से फैलता है।

0: जी जी
1: और वो पूरे को फल को ही ग्रसित कर लेता है, और कुछ दिन बाद देखिए वो पूरा फल काला हो जाएगा और झड़ के पेड़ से गिर जाएगा,
0: कई जगह पर काले काले
1: तो उसी को हम लोग कहते हैं मम्मीफाइड।
0: दूर से देखने पे लगता है कि शायद वहां पर वो सड़न हो गया या कुछ
1: जी। तो इस तरह तो इसमें क्या करना है कि ये जो गिर के जो निकल बागान में गिरते हैं अमरुद, उसको एकत्र कर लेना, वहां नहीं रहने देना है। और इसमें देखिएगा कि एक और लक्षण क्या है कि टहनी के ऊपर से ही वो पौधा सूखना शुरू होता है और नीचे आता जाता है, तो इसको हम लोग डाईबैक सिम्टम भी कहते हैं। ऊपर से सूख के नीचे की ओर आएगा, तो उसमें क्या करना है कि जो सूख रहा है जहाँ तक हरा है वहाँ उस भाग को हरा वाला भाग के पास काट दें, उसमें बोर्डो पेस्ट का मिश्रण घोल लेप बना करके वहाँ लगा दें, और बाकी में जो है सो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से है या डाइथेन M45 वो दवा का स्प्रे कर देने से ये समस्या का निदान हो जाएगा। इसके अलावा पपीता एक फसल है जिसमें कि आप देखेंगे कि एक बीमारी आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टेम और फुट रॉट। जब देखेंगे कि बारिश लगातार हो रही है अगस्त सितंबर के महीने में और खेत में जल निकास की सुविधा नहीं है, तो देखिएगा कि इसमें जो है स्टेम के पोर्शन पे जो मिट्टी से लगा हुआ जो तना है उस पर देखिए चारों तरफ जो है वाटर सोक लेजन बन जाएगा और वो पूरा घेर लेगा, काला काला हो जाएगा, फिर वहीं से जो पौधा गिर जाता है। जैसे ही समस्या देखने को मिले तो खेत से तुरंत जल निकास की व्यवस्था कर दें। और एक दवाई है रिडोमिल MZ, ये एक फफूंद है पीथियम एफेनी डर्मेटम, उसके द्वारा होता है। तो जल निकास की व्यवस्था करके और पौधे के साथ जो जड़ के पास जो मिट्टी है उसको भी इस दवा से मेटालैक्जिल जो रिडोमिल MZ के नाम से बाजार में है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल बना करके पूरा ड्रेंचिंग कर दें वहाँ के मिट्टी को और पौधे में भी स्प्रे कर दें। ऐसा 2 बार करने से 15 दिन के अंतराल पे किसान भाई अपने फसल को बचा ले जाएंगे।
0: तो श्रोताओं ये थी जानकारी फल वृक्षों में या फलों में जो रोग होते हैं उनके कैसे उसके लक्षण हैं और कैसे उन पर नियंत्रण पाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हेम चंद्रलाल, अध्यक्ष पौधा रोग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कृषक भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।
1: आपको ये प्रणाम किसान भाई जोहार।
2: तो भाई बहन एखन हम सुन ली कि फल वृक्ष कर रोग नियंत्रण कैसे करे के चाहिए, हमरे के बता लें डॉक्टर हेमचंद लाल से गोठिया ले प्रभु शरण। तो देखो हमरे के फल वृक्ष मन तो जरूर लगाए के चाहिए और जानकारी एकदम ले के चाहिए, कहीं से भी अगर हमारे कर जानकारी भेटात है तो जानकारी ले के चाहिए और अपन खेत में और अपन वृक्ष मन कर देखभाल में जरूर प्रयोग करे के चाहिए, है कि नहीं?
3: एकदम नगद जानकारी भी रहे।
2: तो देखो विष्णु भाई अब तो गीत कर बेरा भी हो चले थे, क्या तो गीत सुनती तो बेस लात लग
3: एकदम नगद बात के कहली काली की देखो बात कर बीच में रीझ रंग भी हो चाहिए। तो हमरे मन नागपुरी में कालिंदी कुमारी और संगीमनकर गावल गीत के चलो सुनी ला
2: चलो तो।

0: तो भाई भाई मैं देखो एखन हमरे मन सुन ली कालिंदी कुमारी और संगी मुनकर गावल गीत जे कि नागपुर में रहे जे कि संदेश भी देले और संदेश के हमरे मन के बढ़िया से सुन ली और इस संदेश के हमरे के अपन खेत डाँड़ मन में जरूर प्रयोग भी करे चाहिए है कि नहीं
1: एकदम। तो देखो भाई अब गीत करवा दे हमरे मन नई उम्र कर नई फसल में हमरे मन मशरूम उत्पादक एगो किसान विक्की कुमार से करल भेंट के सुनब और इनकर से गोठाए हैं हमरे कर संगी मनोज कुमार।
2: मेरा नाम विक्की कुमार है, मैं कांके बोलो के निवरी विकास गांव के रहने वाला हूं और मैं सबसे ज्यादा मशरूम का खेती करता हूं।
0: अच्छी बात है भाई कि आप मशरूम का खेती बाड़ी करते हैं। भाई आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी?
2: हाँ पढ़ाई लिखाई एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई कर चुका हूँ, उसके अलावा मशरूम का प्रशिक्षण लिए हुए हैं। मशरूम का प्रशिक्षण लेते हुए और ट्रेनिंग भी हम देते हैं गांव-गांव जाके, और इस खेती को जैसे मशरूम हो जाता है ना तो इसमें सबका माल को मशरूम को लेके बेचने का भी काम हम ही करते हैं।
0: तो भाई अच्छी बात है आप मशरूम से जुड़े हुए हैं, तो कितने सालों से जुड़े हैं मशरूम से?
2: हम 10 साल हो गया।
0: 10 साल इस क्षेत्र में आपके लिए प्रेरणा कैसे मिला, कहाँ से आप सोचे कि भाई क्षेत्र में आना चाहिए मशरूम का क्षेत्र में?
2: एक्चुअली हम एक बार रांची आए थे तो रांची यूनिवर्सिटी गेट के पास बिकते हुए देखे थे, तो उनके बाद हम उस बेचते हुए देखे तो वो पता कि कहाँ से ये होता है, तो जिस समय हम देखे थे उस समय तो वो दिल्ली से आता था, तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि हम दिल्ली से मंगा पाए, तो उसको थोड़ा सा हम गूगल उगल में सर्च किए, उसके बाद पता चला नहीं प्लांटों में इनका बीज मिलता है, बीज मिलता है तो बीज को ला के उसके बाद प्रैक्टिकली किए, तो प्रैक्टिकली करने के बाद फर्स्ट टाइम तो नहीं सक्सेसफुल हुए लेकिन उसी क्रम में प्रक्रिया 1-2-3 बार किए उसके बाद सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद मेरे अंदर आत्मविश्वास हो गया कि मैं अब कर सकता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं करना स्टार्ट किया, करते करते आज देखिए मैं इसको एक प्रोफेशनल टाइप से वर्क कर रहा हूँ, अब वर्क करते करते 4-5 आदमी भी रखे हुए अपने साथ।
0: तो अच्छी बात है विक्की भाई कि आप मशरूम के क्षेत्र में कदम रखे और अभी हमको लगता है कि आप काफी सफल हो चुके हैं। तो शुरुआत दौर में कैसे शुरुआत किए थे आप, कितने जगह से शुरुआत किए, क्या कितना पूंजी लगा?
2: स्टार्टअप में मैं स्टूडेंट थे तो पैसा एक्चुअली कैपिटल का भी पूंजी था, तो 10x10 का रूम में 7-8 हजार लेके हम आए थे, और उसी को 7-8 हजार लेके आने के बाद उसी को धीरे धीरे क्रम बाई क्रम करके साल बाई साल मेहनत करते हुए अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए आज अप्रोक्स लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, और रांची में पूरा कवरिंग कर लिया, मेरा ख्याल से 100 आदमी बेच रहा है तो 50 आदमी मेरा माल को मतलब मेरा मशरूम को बेच रहा।
0: तो जैसे मशरूम की बात करें तो कौन कौन सा मशरूम का उत्पादन करते हैं?
2: हम एक्चुअली झारखंड में सबसे ज्यादा बटम और डिंगरी मशरूम का बहुत ज्यादा प्रचलित है, और उसके अलावा और भी मशरूम का हम जानते हैं प्रोडक्शन करने लेकिन वो बहुत कोई जानता नहीं है, इसीलिए हम उसको तो नहीं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बटम और डिंगरी मशरूम, जो कि बटम अभी तो सब जगह सब राशन दुकान में भी मिल रहा है, जगह जगह चौक चौराहे पे भी मिल रहा है,

0: और छाता मशरूम अभी देखिए खटाल में मिलता है, कचहरी रवि एंड मशरूम एंड वेजिटेबल सप्लायर में भी मिलता है, प्लस मेरा नेवरी विकास में भी ऑफिस है वहाँ भी मिलता है, इस टाइप से हर एक जगह मशरूम मिलता है।
1: तो आप अपने क्षेत्र में जहाँ पे मशरूम लगाए हैं वो करीब कितना बड़ा एरिया में लगाए होंगे?
0: हम अभी बटर मशरूम का 4 रूम में अपना लगाए हुए हैं, प्रत्येक दिन 150 kg प्रोडक्शन हो रहा है, और छाता का माने तो 30x50 का 2 रूम है और उसी में प्रोडक्शन हो रहा है, और छाता मेरा ख्याल से 150 kg प्लस है रांची में मेरा।
1: तो डेली आपका सप्लाई हो रहा है,
0: हाँ, डेली सप्लाई हो रहा, हर एक काउंटर में सप्लाई हो रहा,
1: तो बेचने का समस्या कोई नहीं है सर?
0: कोई समस्या नहीं। हम तो और बोलते हैं कि और किसान हमारे साथ जुड़े तो उसका भी बेचने का जिम्मेवारी हम ले लेंगे।
1: जैसे कि बटर मशरूम के बारे में बात करें तो शुरुआत से कैसे लगाते हैं, शुरुआत थोड़ा सा बताएं उसको कैसे लगाते हैं?
0: ये बटन मशरूम का मेथड 1 महीना 45 दिन का है, उनका एक कंपोस्ट खाद बनता है। कंपोस्ट खाद में बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है, जैसे भूसा हो गया, चोकड़ हो गया, गुड़ हो गया, और कुछ कुछ खाद बीज दुकान से कुछ कुछ मटेरियल आता है, यूरिया डीएपी भी कुछ कुछ वहाँ डाला जाता है, और जो हो गया पोल्ट्री जो मुर्गी का जो होता है वो भी डाले जाते हैं भूसा को गर्म करने के लिए। वो सबको 1 मंथ तक प्रक्रिया किया जाता है, मतलब अगर हम चेम्बर में बनाते हैं तो 14 से 15 दिन में हो जाता है, और प्रकृति के हिसाब से हम बनाते हैं तो कम से कम 30 दिन लगता है। तो अब हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे बनाएं। बड़े बड़े प्लांट जैसे खुले हैं वो तो अपना चेम्बर बनाए हुए हैं, वो तो 14 से 15 दिन में खाद कंप्लीट कर ले रहे हैं, वो खाद में स्पॉनिंग करके उसके बाद उसका जो एसी रूम होता है वहाँ डाल देते हैं, वहाँ कम से कम 15 दिन लगता है, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है।
1: तो करीब कितने दिन में तैयार हो जाता है मशरूम बटम का?
0: बटन मशरूम 45 दिन में कंप्लीट फ्रूटिंग आने लगता है।
1: 45 दिन में।
0: हाँ
1: चलिए अच्छी बात है विकी भाई कि आप मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और बहुत सारे किसान लोग बता रहे हैं और इससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और एक तरह से कहिए तो एक आमदनी का अच्छा स्रोत भी है कि नहीं?
0: हाँ हाँ
1: आपको क्या लगता है कि अभी के क्षेत्र में एक अच्छा आमदनी इसे मिल सकता है?
0: बहुत अच्छा स्कोप है अभी के क्षेत्र में। जैसे हम पहले आपको डिक्लेरेंस किए कि हम एक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है,
1: सही बात,
0: और
1: सही बात
0: आज के डेट में हम अपना फाइल लेके दर दर नौकरी मांगने से अच्छा है कि हम
1: अपना,
0: आत्मनिर्भर बन जाए,
1: सही बात
0: और
1: है।
0: हमारे आज अभी सब कोई आत्मनिर्भर बनना स्टार्ट कर जाए तो बेरोजगार ही हट जाएगा। हम किसी पे निर्भर ना रहे, अपना खुद का मतलब क्या प्रोडक्ट को लॉन्च करे, हर एक कोई कर रहा उस प्रकार से हम लोग भी कर सकते हैं, नवयुवक है।
1: सही बात है। तो किसान भाई आप लोग खेती बाड़ी करें और साथ में खेती बाड़ी से मशरूम का अगर आप उत्पादन करते हैं तो एक अलग से आपका व्यवसाय हो सकता है और आमदनी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे एक बात को सुन रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: यही संदेश है कि अगर मशरूम में इंटरेस्टेड है और करना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें, और उसमें मेरे साइड से भी सहयोग रहेगा। जैसे कि आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है कि मार्केटिंग, कैसे हम उसको प्रोडक्शन कर लिए लेकिन उसको सही स्थान पे बेच नहीं पा रहे हैं, तो हम बहुत कोई को सहयोग करते हैं, उसी प्रकार सहयोग करेंगे।
1: जैसे कि बहुत सारे लोग खरीदते हैं और खाते हैं तो सबसे अच्छा मशरूम अगर बटू मशरूम खरीदे तो बहुत पुराना ना हो, अच्छा हो, तो कैसे पहचान करेंगे वो?
0: देखिए सबसे बड़ा चीज़ है तो मशरूम 2-3 फ्लश में कटता है। पहला फ्लश जो होता है बहुत हार्ड टाइप से रहता है, जैसे आलू हम लोग पकड़ते हैं तो थोड़ा पूरा हार्ड रहता है ना, उस टाइप से मशरूम बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद डे बाय डे जैसे जैसे जैसे मशरूम बासी होने लगता है तो रुई के जैसा नरम होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा नरम हो गया तो थोड़ा सा
1: बासी
0: टेस्ट
1: रहता
0: में,
1: है।
0: हाँ टेस्ट में थोड़ा सा मतलब अंतर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ख़राब तो नहीं होता है लेकिन टेस्ट में दोनों में अंतर हो जाता है।
1: तो किसान भाई आप जब भी खरीदें तो आप देख कर समझ के खरीदें और खाएं, और किसान भाइयों आप लोग खेती बाड़ी करें और साथ में मशरूम का उत्पादन जरूर करें। तो किसान भाइयों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे बेकी कुमार जो कि मशरूम का उत्पादन करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक बेकी आपको जोहार है, नमस्कार, धन्यवाद है।
0: नमस्कार सर।
1: और किसान भाई आपको भी धन्यवाद, जोहार। तो भाई बहन जैसन कि हमारे मन सुन ली कि मशरूम कर खेती हमारे मन के कैसे करे के चाहिए और मशरूम से कितना फायदा है और मशरूम हमारे मन के काले के लगा के चाहिए और कौन कौन ऐसा मशरूम है जो कि हमारे कर झारखंड राज्य में वगैरह सब कोई खाए ना और हमरे के मशरूम उत्पादन करे के चाहिए और एक से फायदा उठाए के चाहिए। चूँकि देखो खेती बाड़ी तो हमारे मन करते रही ला, लेकिन संगे संगे अगर दोसर दने भी हमारे मन तनी में ध्यान देव नहीं तो आमदनी जरूर से जरूर बढ़ी है कि नहीं?
2: एकदम सही बात के कहली। और एखन प्राकृतिक रूप में भी जंगल झाड़ में खुखड़ी मन उठेला और उखो हमरे के खाए के चाहिए।
1: और देखो खुखड़ी तो जंगल झाड़ में उठबे करे ले, लेकिन ऐसा खुखड़ी के खाए के नखे जेकर से हमरे में बीमार पड़ जाओ, तो हमरे मन वही खुखड़ी के खाए के जेकर बारे में हमरे मन जान ला और नहीं जाने थे तो उकर खुखड़ी के एकदम छुए के भी नखे और खाए के तो दूर की बात है
2: एकदम
1: कि
2: एकदम सही बात के कह ली।
1: तो भाई बहन देखो एक संग आज कर

0: हमरे कर किसान वानी कर बेरासी रात है तो कहक चाहती कि कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची कर।
2: हर जोखिम

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अपने डाल्टनगंज केंद्र से किसान वाणी कार्यक्रम। स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हो चुके हैं श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं दर्शकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। आज के ग्रामीण सभा कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज की इस ग्रामीण सभा कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे समसामयिक कृषि कार्य। आज की बात का विषय है बकरी पालन के अनेकों लाभ, और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कोटवंधा गांव के रामसेवक ठाकुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे संतोष कुमार, और आज की नसीहत में हम जानेंगे अंतर्वर्ती खेती से लाभ, और आज का मौसम का भी मिजाज हम आपको बताएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए ये जानते हैं समसामयिक कृषि कार्य। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पलामू क्षेत्र में कृषि का जो कार्य है मुख्य रूप से वह वर्षा पर निर्भर है। यहाँ की जो जलवायु है प्रायः गर्म, और वर्षा का जो वितरण होता है, वर्षा जो होती है वो भी प्रायः असमान रहती है। यहाँ पर धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली के साथ साथ कई प्रमुख सब्जियों की खेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में खरीफ फसलों की देखभाल के साथ साथ आगामी रबी मौसम की भी तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है श्रोताओं। तो श्रोताओं, यदि हम बात करें धान की फसल की देखरेख के लिए, तो निचले और मध्यम भूमि वाले क्षेत्रों में धान की फसल की भड़वार और कल्ले निकलने की अवस्था प्रायः प्रारंभ हो जाती है। इसलिए खेत में आवश्यकता अनुसार पानी का रहना भी जरूरी है, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित कर ले कि जल भराव ना हो सके। अधिक वर्षा होने पर खेत में अतिरिक्त पानी निकालने की भी व्यवस्था का होना जरूरी है श्रोताओं। धान में खरपतवार दिखाई पड़े तो समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहें। धान की पत्तियों का नियमित रूप से निरीक्षण भी करें। तना छेदक, पत्ती मोड़क या अन्य कीटों का प्रकोप दिखाई पड़े तो अपने कृषि विशेषज्ञ से सलाह कर लेकर उचित नियंत्रण का भी प्रयास करें श्रोताओं। साथ ही साथ पलामू के क्षेत्र के ऊपरी भूमि में मक्का, अरहर, उड़द, मूंग और तिल की फसलों की खेती की जाती है, तो इन फसलों में भी जल भराव की समस्या से बचना आवश्यक है। अरहर में फली छेदक और अन्य कीटों की भी नियमित निगरानी करते रहे। उड़द और मूंग में पीला मोजेक जैसे रोग लग सकते हैं, तो वैसे जब लगे आपको दिखाई पड़े तो उस रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकाल कर अलग कर दें। साथ ही साथ अगस्त में श्रोताओं, प्रायः ज़्यादा नमी होने के कारण खेतों में खरपतवार काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं। खरपतवार फसल से पानी, पोषक तत्व और प्रकाश के लिए प्रायः प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। इसलिए समय पर निराई गुड़ाई जरूर करते रहें, और आवश्यकता अनुसार जो भी खरपतवार के लिए अनुशंसित जो दवा है उसका निर्धारित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, वर्षा जल का प्रबंधन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि प्रायः कभी कभी कम समय में ज़्यादा वर्षा होने के कारण खेतों में पानी जमा हो सकता है। धान को छोड़कर ज़्यादातर फसलों में जल भराव काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए खेत की मेड़, नलियों और जल निकास की व्यवस्था को जरूर ठीक रखें। दूसरी ओर, वर्षा रुकने पर मिट्टी में उपलब्ध नमी को बचाने के लिए खेत में मल्चिंग, साथ ही साथ उचित गुड़ाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। और श्रोताओं, सब्जियों की खेती में मुख्य रूप से भिंडी, बैंगन, मिर्च, टमाटर, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा या अन्य सब्जियों की खेती किया जाता है, करते भी हमारे किसान भाई, तो इस समय सब्जियों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी जरूरी हो जाता है। बेल वाली सब्जियों को उचित सहारा दें,

0: खेत में जल भराव ना हो, संक्रमित पत्तियों और फलों को तोड़कर भी अलग कर देगा इस प्रकार के सब्जियों में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो साथ ही साथ फसलों में संतुलित पोषक तत्वों का भी प्रबंधन आवश्यक हो जाता है श्रोताओं। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना लाजमी हो जाता है। मिट्टी के जांच के पश्चात ही उर्वरक का उपयोग करें। गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जा सकता है और हमारे किसान भाई करते भी हैं, क्योंकि गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट से मिट्टी की संरचना और उर्वरा शक्ति दोनों में सुधार होती है। अधिक नमी और गर्म वातावरण के कारण भी प्रायः देखा जाता है श्रोताओं की फसलों में कीट और रोग लग सकते हैं। तो इस सप्ताह, अगस्त के सप्ताह में कम से कम दो बार खेतों का जरूर निरीक्षण करें, देखें, और कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन टेप या पीले चिपचिपे टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जरूरत पड़ने पर ही और वो भी अनुशंसित मात्रा में ही किया जा सकता है श्रोताओं। साथ ही साथ श्रोताओं, रबी फसल की तैयारी के लिए अंतिम सप्ताह में ही रबी मौसम की तैयारी को शुरू कर दें। इसमें गेहूं, चना, मसूर, सरसों, मटर की जो भी उपयुक्त और प्रमाणित बीज है उसकी व्यवस्था कर ले। खेत की मिट्टी की भी जांच करवा ले और उसी अनुरूप उर्वरक का भी, क्या उर्वरक का उपयोग करना है उसकी योजना बना ले। खरीफ फसल की कटाई के पश्चात खेत की उचित तैयारी भी रखें और रबी फसलों की समय पर बुआई करें, इससे उत्पादन बेहतर प्राप्त होता है श्रोताओं। साथ ही साथ श्रोताओं, कृषि के साथ साथ बकरी पालन, गाय, भैंस, मुर्गी और बत्तख पालन को भी अतिरिक्त आय को प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं के गोबर से जैविक खाद को तैयार कर खेत में इसका उपयोग करें और खेती की लागत कम करने में इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। श्रोताओं, कीटनाशक का छिड़काव करते समय दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षा साधनों का जरूर उपयोग में लाएं। तेज हवा या अत्यधिक वर्षा की संभावना में कीटनाशकों का छिड़काव न करें। कीटनाशकों को बच्चों और पशुओं से दूर रखें। फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भी अच्छे तरीके से सुखाकर सुरक्षित और सूखे स्थान पर ही भंडारित करें श्रोताओं। साथ ही साथ श्रोताओं, वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए और मौसम के पूर्वानुसार के ही काम करें। लंबे समय तक वर्षा न होने पर उपलब्ध पानी का उचित प्रबंधन करें। सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकल जैसी तकनीक का उपयोग करें, इससे पानी की बचत हो जाती है। तो देखा जा सकता हो तो प्लामू क्षेत्र में वर्तमान समय में कृषि कार्यों में धान और अन्य खरीफ फसलों की देखभाल, खरपतवार का नियंत्रण, जल निकासी, नमी का संरक्षण, कीटों रोग का प्रबंधन और रबी फसल की तैयारी काफ़ी प्रमुख हो जाती है। प्लामू की वर्षा आधारित कृषि व्यवस्था को देखा जाए तो जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और फसल के विविधीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमारे किसान भाई यदि वैज्ञानिक कृषि तकनीक को अपनाते हैं, संतुलित उर्वरक का उपयोग करते हैं, जैविक खाद और मौसम के आधारित सलाह को मानते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, अभी का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है फसल के लिए और आने वाले फसल यानी कि रबी के मौसम के लिए भी फसलों की तैयारी जरूरी हो जाती है। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें समसामयिक कृषि कार्य, और अब आइए सुनते हैं रामसेवक ठाकुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है संतोष कुमार।
1: वापस आए गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी ग्रामीण भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे लेसलीगंज प्रखंड के पलामू जिला के कठौंदा गांव के एक कृषक से धान की खेती पर, उनकी सब्जियां की खेती पर, खासकर लत्तर वर्गीय सब्जियां की खेती इन्होंने बृहद पैमाने पर की है और धान की खेती फली फूली हुई है इनकी, सब में बालियाँ आनी शुरू हो गई हैं। इस बार उम्मीद है कि ये धान का बहुत अच्छा उत्पादन करेंगे और यहाँ के कृषक

0: लोग पानी की वजह से धान की बेहद खेतीबारी किए हुए हैं। हमारे किसान भाई हैं राम सेवक ठाकुर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अभी कितने एकड़ में धान की खेती लगी हुई है?
1: हम तो एक एकड़ में धान की खेती उपजाए हैं
0: अच्छा।
1: और धान बहुत अच्छा है और बुवाई भी अच्छा था से किए हैं। जब धान रोपने का समय है से आपको डीएपी खाद छीट करके इसके बाद है से धान हम रोपा किए हैं। अब रोपा करने के बाद फिर 21 दिन के बाद यूरिया भी डाल दिए हैं। धान एकदम बिल्कुल अच्छा है और धान का फसल बहुत बहुत बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक फसल है। उसमें डैम का पानी भी चलता है, पानी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
0: अच्छा।
1: और आपका जो अब बारी रही तीसरे बार की खाद, तीसरे बार भी मैं कल ही यूरिया खाद मैं छिट दिया हूँ और धान जो है से पूरे गांव में आ गया है, पूरे मैंने बाली देने के मौसम में आ गया
0: अवस्था
1: है,
0: में।
1: अवस्था में है और बहुत अच्छा है। धान बहुत बहुत सुंदर, हमारे एरिया में बहुत सुंदर धान है।
0: अब कौन धान लगाए हैं आप?
1: हम लगाए हैं शुक्ला 64।
0: अच्छा।
1: शुक्ला 64 आपको बहुत दर बन जाता है, वो एक कट्ठा में 5 बन जाता है।
0: अच्छा।
1: मैं एक एकड़ में ज़मीन में धान किया हूँ जिसमें मुझे 100 मन से कुछ ऊपर धान हो जाता है। मुझे खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है और बाल बच्चे बढ़िया से भरण पोषण कर लेते हैं बाल बच्चे को, और 2-3 गो मवेशी भी रखे हैं, पुआल भी हो जाता है, पुआल भी मवेशी खाता पीता है, उसमें लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसको हम पुआल को ऐसे कटवा देते हैं, पोटा कर देते हैं और पोटा करने के बाद जो है से आपको ऐसे बो बोत बोत करके ने बो बो करके उसको खिलाते हैं मवेशी को। 2 गो मवेशी दुधारू रखे हैं, गाय है अभी, गाभिन है, अभी बच्चा दशहरा के बाद देने वाली है।
0: अच्छा। दशहरा के बाद मतलब ये बच्चा देगी
1: जी
0: और फिर उसका लालन पालन करेंगे, फिर उसका भी लाभ उठाएंगे।
1: हाँ जी।
0: और सब्जियों की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं?
1: सब्जी अभी सर ऐसा है ना कि सब्जी में अभी आपको खेती में मकई की खेती में हम लोग बुने थे सब्जी भिंडी वगैरह, तो मकई तो अति पानी के चलते कोड़ाया नहीं, लेकिन भिंडी कुछ निकल रहा है। और आपको घोरान में झींगी और
0: नेनुआ,
1: नेनुआ है,
0: बोधी,
1: बोदी,
0: ये सब
1: ये
0: अच्छा।
1: सब अच्छा से निकल रहा है, उससे बराबर हम लोग खा पी रहे हैं। यही समस्या है और सब्जियां यही है। और अभी जो है से कुछ दिन के बाद जब बारी बारी साफ हो जाएगा तो आलू रोपेंगे, टमाटर रोपेंगे, बैंगन रोपेंगे।
0: मैंने खरीफ रबी की तैयारी भी करनी है ना,
1: हाँ, रबी की भी तैयारी करनी
0: तो
1: है।
0: उसकी तैयारी कर रहे हैं कि अभी खरीफ के मतलब फसल
1: अभी
0: बाद?
1: अभी खरीफ के बाद होगा। हाँ, अभी अभी समूचा झाड़ी लगा हुआ है।
0: अच्छा। उसको फिर साफ सफाई
1: हाँ,
0: करके
1: सफाई
0: फिर
1: करने के बाद
0: एक
1: होगा।
0: बार कुड़ाई उड़ाई करके।
1: जी।
0: अच्छा। धान में यहाँ कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं जिसके चलते हमारे कृषक भाई परेशान होते हैं?
1: धान में बीमारियां लगने का कारण है ज़्यादा पानी होने के बाद ऐसे चातर लगता है, बांकी लगता है। तो उसमें हम लोग करते हैं क्या, अगर थाइमेट छींटने से अगर बांकी समाप्त हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे आपको मशीन द्वारा है, पाइप द्वारा है से दवा छींटा जाता है तो उससे कामयाब हो जाता है आपका ये बाकी वाला धान। और चातर वाला धान में बहुत मेहनत करता पड़ना पड़ता है, उसको 2 बार देना पड़ता है, आपको दवा छिटना पड़ता है, इसके बाद तब ऐसे वो कामयाब होता
0: अच्छा। और दलहन की अगर बात की जाए राम
1: है।
0: सेवक भाई,
1: जी,
0: तो अभी दलहन की क्या स्थिति है इधर?
1: दलहन में अभी देख लीजिए, अरहर तो खेती बोया नहीं, पानी
0: मैं पानी के चलते थोड़ा
1: पानी के
0: बर्बाद हुआ।
1: चलते
0: धान
1: नहीं।
0: तो पानी से
1: हाँ, हो जाएगा
0: मतलब
1: धान।
0: बहुत सुंदर रहा।
1: जी, लेकिन दाल दलहन में जो है से
0: मार खा
1: आपको
0: गया थोड़ा।
1: मार खा गया, कहीं कुछ नहीं है। अभी
0: इधर
1: देख
0: पूरे लेसलीगंज में क्या स्थिति है?
1: लेसलिंग में पूरी स्थिति है, जैसे नौडिहा गांव हो गया, सोनबरसा गांव हो गया, ये सब एरिया आपको दिदरी हो गया, ये सब एरिया आपको केवाल जगह है, तो केवाल में तो मकई कहीं नहीं बुनाया, पूरा खाली है बारी। तो अब जो है से अब उसमें पूरा अति हो फसल में यही होगा कि सब्जी उगाया जाएगा, कोई भाई लोग सब्जी उगाएंगे, यही समस्या है।
0: और बाकी थोड़े परेशानियां आ गई, ज्यादा
1: हाँ
0: बारिश के चलते भी
1: हाँ ज़्यादा
0: परेशानियां,
1: बारिश के चलते परेशानियाँ
0: अरहर
1: हैं,
0: वगैरह भी लोग नहीं लगा
1: नहीं
0: पाए।
1: लगा पाया। अभी देखिए पूर्वा नक्षत्र में आपको कुर्थी बोया जाता है, वो भी अभी नहीं बोया है, अभी कुछ लोग बुन रहा है टाँड में
0: कुर्थी को,
1: कुर्थी में। जबकि कुर्थी से ये फायदा है कि जिसका पथरी हो जाता है, कुर्थी कुर्थी का दाल खाने से पथरी समाप्त हो जाता है। ये कुर्थी कभी अभी फसल भी नहीं हुआ है, कुर्थी का फसल बोआ रहा है।
0: तो ये

0: चूंकि अब धान ही उनका एक
1: हाँ धान ही
0: आज दलहन तो मार खा ही गया
1: दलहन मार खा गया
0: हाँ मक्का भी कहीं कहीं निकला है
1: बहुत बहुत कम हाँ बहुत कम।
0: अच्छा इधर मोटे अनाज की खेती लोग करते हैं जैसे सावा कोदो मड़ुआ इसे?
1: नहीं पहले होता था सर हमारे पास पहले हमारे यहाँ होता था कोदो और मड़ुआ मड़ुआ के भी रोटी मड़ुआ के रोटी और माठा अगर मिला के खाए तो बहुत आनंद आता था लेकिन अब ये नहीं होता है कहाँ कोई होता है अब अच्छा। नहीं होता है।
0: तो इधर आपका सिंचाई व्यवस्था क्या है?
1: सिंचाई व्यवस्था में आपका ऐसे डैम से पानी पड़ता है और
0: कौन डैम है इधर?
1: सोंस डैम।
0: अच्छा
1: सोंस डैम से हम लोग को पड़ता है पानी और सोंस डैम से बहुत गोपालगंज सोंस।
0: तो हम देखा जाए तो इधर अभी मोटे अनाज की खेती हमारे किसान भाई लोग नहीं कर रहे हैं।
1: नहीं नहीं नहीं मड़ुआ वगैरह नहीं कर रहे हैं मड़ुआ वगैरह सावा वगैरह पहले होता था सर लेकिन अब नहीं कुछ हो रहा है अब मोटा अनाज कहीं नहीं होता है। देखिए अभी जितिया पर्व आ रहा है जितिया पर्व में समझिए कि मड़ुआ का आटा परवैतिन के खाना बहुत जरूर रहता है वो समझिए कि आपको 150 रुपये 200 रुपये किलो बिकता है 20 रुपये 100 ग्राम दिया जाता
0: है। फायदा तो इसमें है
1: जी।
0: चलिए ये तो हो गई बात खेती बाड़ी की और आप एक अच्छे लोक गायक कलाकार भी हैं
1: जी
0: जी तो कोई कृषि से गीत हमारे ग्रामीण भाइयों तक पहुँचाइए आप।
1: ठीक खेतवा में रोपता नी धान हो किसान भाई खेतवा में रोपेला धान खेतवा में रोपता नी धान हो किसान भाई।

केला खेत में धनवा, अब खेतवा में बीहन कबारे किसनवा। लह लह करेला खेत में धनवा, खेतवा में बीहन कबारे किसनवा। तन को नाही रखला अभिमान हो किसान भाई, खेतवा में रोपेला धान। ए भाई खेतवा में रोपेला धान, मेहनत से कर गई।

0: लु गैया अन में से भारी खलिहान हो किसान भाई, अन में से भारी खलिहान हो किसान भाई, खेतवा में रोपेला धान ए भैया, खेतवा में रोपेला धान। ठीक दुपहरिया तपावल तू चमवा, ठीक दुपहरिया तपावल तू चमवा, आषाढ़ सावन भादो में भींगे बदनवा। ठीक दुपहरिया तपावल तू चमवा, आषाढ़ सावन भादो में भींगे बदनवा। तन को नहीं रहोला तू आराम हो किसान भाई, तन को नहीं कैला तू आराम हो किसान भाई, खेतवा में रोपेला धान ए भैया, खेतवा में रोपेला धान ए भैया, खेतवा में रोपेला धान ए भैया, खेतवा में रोपेला धान।
1: वाह बहुत सुंदर। हमारे किसान भाई लोग अभी गीत सुन रहे थे खेती बाड़ी से संबंधित कृषि गीत। और कोई निर्गुण वगैरह?
0: सोचते सोचते रामा बीतले समैया, राम से चली रे आईले ना। सोचते सोचते रामा बीतले समैया राम।

राम से चली रे आई लेना। आई कर बैठी गईले, आई कर बैठी गईले।

0: नाम से धर्मी लोगवाना गैले धर्म के दुवरिया राम से धर्मी लोगवाना।
1: बहुत सुंदर। आप थे राम सेवक ठाकुर, लोकगीत भी गाते हैं आप, और बहुत दिन से आपका लोक गायन में रुझान है। आप एक अच्छे लोकगीत गायक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, और खेती बाड़ी भी आपने बहुत अच्छी कर रखी है
0: जी सर।
1: और विशेष करके पानी के चलते इस बार काफ़ी बारिश हो जाने के चलते बहुत से दलहनी फसलें मारी गईं
0: जी,
1: बहुत सब्जियों का भाव भी चढ़ गया, बहुत
0: जी
1: ज़्यादा
0: जी जी
1: सब्जियों की खेती नहीं हो पाई,
0: जी
1: लेकिन धान की खेती बल्ले बल्ले है।
0: खूब खूब खूब, बहुत बहुत अच्छा सर।
1: हाँ, धान पर ही आसरा है
0: जी।
1: चलिए, आप भी धान की खेती बहुत सुंदर किए
0: जी जी
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रामसेवक ठाकुर जी, और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ साझा की हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ, मनोरंजन किया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

जी हाँ श्रोतम, अभी आप सुन रहे थे कठौंदा गांव के लेस्लीगंज प्रखंड के एक सफल कृषक राम सेवक ठाकुर से ली गई भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए जानते हैं आज की बात में। आज की बात का हमारा विषय है बकरी पालन के अनेकों लाभ। जी हाँ श्रोताओं, बकरी पालन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत में किया जाने वाला एक काफ़ी लाभकारी पशुपालन व्यापार है। इसमें छोटे सीमांत किसान, ग्रामीण महिलाएं और बेरोजगार युवा भी इस कार्य को कर स्वरोजगार को अपनाकर एक अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त कर सकते हैं। बकरियां कम जगह में पाली जाती हैं और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल भी रहती है। यहाँ श्रोताओं, यह काफ़ी तेजी से प्रजनन भी करती है क्योंकि बकरियों की प्रजनन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। उनकी उचित देखभाल से इनकी संख्या अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बकरियां घास, पत्तियां, झाड़ियां और कृषि के अवशेष को खा सकती है। इससे चारे की लागत काफी हद तक नियंत्रित भी हो जाती है। बकरी की मेमनी और अन्य जो भी अपशिष्ट जैविक खाद का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। जी हाँ श्रोताओं, इसका उपयोग खेतों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी किया जाता है। बेरोजगार युवा भी इसी कम संख्या में बकरियों की शुरुआत कर धीरे धीरे इस व्यवसाय को अपना एक अच्छा रूप दे सकते हैं। स्थानीय जलवायु के अनुकूल ये अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन करके मांस एवं दूध का उत्पादन भी आप बढ़ा सकते हैं श्रोताओं। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, बकरी पालन कम लागत, कम जगह और अपेक्षाकृत कम जोखिम में आय प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन है। मांस, दूध और बच्चों की जैविक खाद से यह लाभ का भी लाभ प्राप्त होता है। इसमें श्रोताओं, अच्छी नस्ल का चयन, संतुलित आहार, स्वच्छ आवास, नियमित रूप से टीकाकरण, रोग नियंत्रण और उचित बाजार की व्यवस्था अपनाएं तो बकरी पालन को एक सफल व्यापार के रूप में भी देखा जा सकता है। और श्रोताओं, चलते चलते अब हम आपको बता दें डाल्टनगंज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का प्रतिशत 37 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं, अब इसी के साथ आज की इस ग्रामीण सभा से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
5: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
7: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

0: ये मेरा यूपीआई
1: ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
2: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
1: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा पर झारखंड उच्च न्यायालय सख्त, मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने और सीआईडी को जांच सौंपने का निर्देश। राज्य में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश। राज्य के कई इलाकों में 31 अगस्त तक गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, रांची में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, हजारीबाग में 3 दिवसीय प्रमंडलीय खेल की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज ICAR से संबंध भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ. सुजय रक्षित ने रांची स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान रांची सहित राज्य भर में कृषि अनुसंधान, फसलों की गुणवत्ता में सुधार सहित कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं को सहयोग और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसमें संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के केंजरा टोला में भूमि विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तीनों शवों का आज जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया।
1: शासन को ऐसे मामले पर जो जिस टोंटो में जैसे जमीन के बारे में कहा गया, तो लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि जमीन के लिए अब रेवेन्यू मिनिस्टर वहां के हैं, तो उनको उनका क्षेत्र है, उनको खुद देखना चाहिए।
0: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में दोबारा परीक्षा के लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की जांच CID को सौंपने और समय सीमा में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम चुनाव की प्रक्रिया आगामी 31 अगस्त से शुरू हो रही है। इसके तहत 12 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चैम्बर के चुनाव को देखते हुए अलग अलग गुटों में और व्यापारियों में चुनाव सरगर्मी बढ़ रही है। चैम्बर चुनाव में हिस्सा ले रहे तुलसी गुट के प्रमुख तुलसी पटेल ने आज रांची में प्रेस वार्ता में अपनी भावी रणनीति का जिक्र किया।
2: व्यापारी एकदम खुले दिल से रात भर दिन बंद क्या 24 घंटा आवागमन निर्भय रूप से करे, इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा। और जब कानून व्यवस्था के चलते कुछ बड़ी इंडस्ट्री नहीं आती है, तो हमारा प्रयास है पहले कानून व्यवस्था सुधरे।
0: देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने और संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में कल विभिन्न

और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में कल विभिन्न आदि